स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा

वंदन वार, सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, स्वयं व बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

इस संसार में लाखों जीव जंतु रहते हैं जो खुले आसमान के नीचे निश्चिंत जीते हैं। कभी सोचा है कि क्यों मनुष्य इस तरह निश्चिंत नहीं जी पाता? क्योंकि उसे ना तो दूसरों पर भरोसा है और ना ही खुद पर। और जहां भरोसा ही नहीं, वहां कैसी राहत? खुद पर और उस परम पिता पर भरोसा ही जीवन को सुखमय बना सकता है।

उनके दरस का मोह हमें खींच ले जाता है प्रकृति के समीप और हम आत्मविभोर होते हैं। आत्मविभोर का ये वक्त तब भी आता है जब देश प्रेम हमारे मन में जाग उठता है। तो चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं देशगान।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। झरोखा के अंतर्गत सुबह 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुन सकते हैं और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर व्यास से बातचीत, 7 से भूले बिसरे गीत। सात बजकर 30 से हम है राही प्यार के, 8 से समाचार प्रभात, 8:15 से सुनिए त्रिवेणी, सुबह 8:30 से चित्रलोक और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। 10 से सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज का पुनः प्रसारण, गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी सुनिएगा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 11 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात, 12 से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल, 1:00 सुरीला सफर कार्यक्रम सुन सकते हैं और 2 से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण सुनिएगा, 2:15 से दोपहर समाचार। दोपहर 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे, मन चाहे गीत कार्यक्रम का समय है 3 का, नाट्य तरंग कार्यक्रम सुन सकते हैं 3:30 से, आज सुनिए नाटक कंटीला रास्ता का दूसरा भाग, मूल तमिल लेखक है नित्या मूर्ति, हिंदी अनुवाद किया है ए शौर्य राजन ने, निर्देशन वीपी दीक्षित बटुक्का। शाम 4 उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी, प्रस्तुति थी श्री कामले की। 5 से छाया गीत का पुनः प्रसारण, 5:30 से तराने नए पुराने, 6 से हिंदी में समाचार, 6:05 से तराने नए पुराने का पुनः प्रसारण, माफ कीजिएगा तराने नए पुराने जारी रहेगा और 6:30 से झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे। 6:35 से संध्या रंजन, 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर व्यास से बातचीत, 7 विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज सुनिए महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज, वेन शिपले इलेक्ट्रिक गिटार के साथ होंगे ये कलाकार हैं आज के। लड़ी नजरिया लड़ी ये झलके सुन सकते हैं 8 से हवा महल में, लेखन राजेश भदौरिया का, निर्देशन गुरमीत रामल मीत का। 8:15 से 8:45 से समाचार संध्या, 9 से सुनिए आपके लिए ये कार्यक्रम, 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल रॉय पर, छाया गीत का प्रसारण होगा 10 से, 10:30 से ढलती जाए रात और 11 से विविधा। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, श्री रामचरितमानस सुनिए 233 कड़ी।

भरत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

0: आप सुधी श्रोताओं के लिए आज हम चुन लाए हैं एक प्रख्यात गायक कलाकार से की गई भेंट वार्ता, आइए सुनते हैं।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित सी आर व्यास। व्यास जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: व्यास जी, आपके षष्ठी पूर्ति समारोह में श्री पी एल देशपांडे ने बड़ा रोचक और बड़ा ही सुंदर भाषण देते हुए कहा था कि कलाकार कभी रिटायर्ड नहीं होता, और उनमें से आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल
2: है? हाँ, वो तो बात सच है, क्योंकि कलाकार जब अपने कला में मग्न रहता है और पूरा टाइम उनको दे के अपनी साधना करता है, वो कहते हैं कि कलाकार ये सोच में कितना साल गुजरे उनको खुद को मालूम नहीं होता है, वो तो विचार में अपने हमेशा के लिए वो तरुण नहीं रहता है।
1: बहुत सुंदर। व्यास जी, आपने संगीत की शुरू की तालीम प्रारंभिक कब शुरू की?
2: 10 साल से शुरू किया।
1: 10 वर्ष की आयु से?
2: 10 वर्ष की आयु से। लेकिन पहले जो मैं गाता था वो तो हल्का फुल्का गाना गाता था। जब मैं 14-15 साल का हो गया तब किराना घराने में
1: जी।
2: मेरे पहले गुरु जी थे पंडित गोविंद राव भातम्ब्रेकर।
1: अच्छा।
2: उससे मैं तालीम पाया, 6-7 साल उनके पास सीखता था मैं
1: जी।
2: उसी टाउन करके जो हाँ वहाँ जहाँ रहते थे वो
1: जी,
2: वो तो वहाँ मैं तालीम पाया, और वो खुद को कहते थे कि वो किराना घराने के गायक है।
1: अच्छा। लेकिन जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आप ग्वालियर घराने के गायक हैं।
2: हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरा जब स्कूल एजुकेशन
1: जी
2: थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं सोचता था तब मेरा गाने का बहुत मैं आगे जा चुका था, लेकिन मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं था। मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मुझे अच्छी तालीम मिलेगी। जब मैं बम्बई आया, मेरा उम्र था 18 साल की
1: जी,
2: और तब मैंने ग्वालियर
1: घराने
2: राजा रामबा पराडकर जो थे मेरे गुरु जो कैलाशवासी पंडित राजा रामबा पराडकर से तालीम शुरू किया।
1: ग्वालियर घराने के बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने आप में एक समृद्ध गायकी है।
2: उस घराने की पहली एक स्पेशलिटी यानी मतलब था कि भाई जो गायक एक राग में
1: जी
2: अनेक ख्याल गा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: कोई गायक वो ग्वालियर घराने में ऐसा रहते कि भाई एक यमन राग लिया है उसमें एक ही ख्याल आता है, एक द्रुत ख्याल आता है, एक बड़ा ख्याल आता है, उसे वो तो 15-15, 20-20 ख्याल एक एक रागों में बहुत आसानी से गाते याद करते थे।
1: ग्वालियर घराने का उपजंग के बारे में भी
2: ये
1: सुना है कि बहुत
2: उपजंग तो हर घराने में रहती है।
1: अच्छा।
2: कलाकार में होना चाहिए, लेकिन उपजंग क्या होता है वो समझना बड़ा,
1: जिसके जरा हमें समझाते हुए
2: इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा।
1: वैसे
2: तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि अभी एक समझो एक राग है जैसा केदार है।
1: अच्छा।
2: तो अभी आलाप में

0: रे ऐसा वो ले रे लगाने का जो तरीका है ना,
1: जी
0: ये एक
1: हाँ
0: उपजांग ही समझा जाता है कि वो हर एक अलाप में वो अलाप बढ़ाते बढ़ाते वो रे ऐसा ही लगाना चाहिए। अतः
1: जी
0: ये एक सुर का हो गया।
1: जी
0: अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई
1: अच्छा
0: उपज का एक सुरों का पुंज होता है,
1: जी
0: जैसा केदार में लेंगे मम रे सा रे सा सा,
1: जी हाँ
0: म रे सा रे सा रे रे सा सा। अभी ये छोटा हो गया ना, इसमें ले में गा, जब उसकी तान बनती है ना, म रे सा रे सा रे रे सा सा, म रे सा रे रे सा सा रे रे सा सा, पा पा म रे सा रे रे सा सा रे रे सा सा, ध ध प ध प प म म प प म रे सा रे सा रे रे सा सा। ये जो उपज है ना, वो हमेशा के लिए ऐसा
1: अच्छा
0: एक रूल था, यानी नियम था
1: कहा
0: वो
1: जाता
0: घराने में, कि जब एक उपज चालू हो गया तो उपज की पूर्तता, वो आखिर में वही चीज आना चाहिए,
1: जी हाँ।
0: तब उपज की पूर्तता हो गया।
1: तो ग्वालियर घराने में भी आलाप और
0: हाँ, ये सब
1: विलंबित
0: बातें थी।
1: स्वरों को
0: आलाप,
1: ध्यान
0: बोल आलाप, पहले
1: कुछ
0: बोल आलाप, फिर बोल अंकित कुछ ताने, फिर
1: ख्याल
0: बढ़त
1: पर ज्यादा
0: बोल,
1: उनका ध्यान रहता था
0: ख्याल। हाँ,
1: ख्याल।
0: ख्याल तो याद करना बड़ा, ख्याल तो पहले, अगर
1: जी
0: ग्वालियर घराने में पहले ये नियम था कि जब कलाकार अपने स्टेज पे बैठ के प्रोग्राम देता था ना,
1: जी
0: तो पहले वो ख्याल की बंदिश, उसकी स्थाई दो दफे गा के लेगा, बाद में अंतर दो दफे गाएंगे, फिर उसके बोल आलाप जो भी कुछ गाने का ढंग होता है उस ढंग से चलेगा। बिना ख्याल पूरा गा के कभी वो गाना चालू नहीं करते थे। अगर ऐसा किया तो कुछ कलाकार ऐसे मानते थे कि उसको तालीम अच्छी नहीं है।
1: व्यास जी, ग्वालियर घराने के साथ साथ आपने आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित से भी तालीम हासिल की
0: हाँ,
1: है,
0: बहुत
1: तो अपने गायन में आपने आगरा घराने की गायन शैली के किन अंगों को अपनाया है?
0: राम सिंह साहब, एक बात है कि एक बात बताना,

0: पड़ेगा मुझे।
1: हाँ।
0: जगन्नाथ बाबा पुरोहित जिसको जिनको जिनका गाने में नाम था गुनीदास
1: जी हाँ,
0: तो आगरा घराने में तो तालीम पाया
1: जी,
0: खासा है बुलाते मिलाए तो सिन्हा साहब के पास बहुत साल वो सीखते थे
1: जी।
0: लेकिन मैं जब बुआ साहब के पास गया तो इस सोच में नहीं गया था कि मैं आगरा घराने की गायकी सीखना चाहिए मुझे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: लेकिन मैं उनके पास गया एक बात में कि वो बहुत भावनिक गाते थे।
1: अच्छा,
0: खुद बुआ साहब
1: जी।
0: तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने में ये बात आना चाहिए। अभी इसको बहुत लोग ऐसे बोले थे कि

0: सुर लगाने का तरीका और उसमें भाव प्रकट करना, यानी आप खुद कलाकार कुछ ऑडियंस को कहने को चाहता है ऐसा लगता है। तो इस बात को मैंने ध्यान देके और ये अपना चाहिए, इसके लिए भी बुआ साहब के पास।
1: आप जैसे कलाकारों ने तो अपने जीवन में वर्षों की सतत साधना की और तब जाकर किसी एक मकाम पर पहुंचे हैं। आज की जो तरुण पीढ़ी है वे संगीत को आज पूरा समय अर्पित नहीं कर सकते, मतलब जीवन यापन भी जरूरी है और साथ साथ ये भी आशा रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीख भी जाए, प्रसिद्धि भी पाले।
0: वो तो एक बड़ा ऐसा सवाल आप पूछा है, यानी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आज के जो तरुण कलाकार है वो बड़े अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: बड़े अच्छे गाने वाले हैं और बड़े टैलेंटेड है
1: जी।
0: लेकिन तालीम कहाँ से पाना चाहिए, कैसी पाना चाहिए और जो तालीम मिलती है वो अच्छी है या नहीं, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो जानकर वो जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे कहाँ से, तो बड़े अच्छे गायक बन जाएंगे और अपना गुजारा भी उनके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोई यंगर टैलेंट्स है मेरे
1: अच्छा।
0: सामने
1: आप और बड़े आशावादी हैं कि भविष्य अच्छा, बड़ा उज्जवल है हमारा देश का।
0: बहुत अच्छे अच्छे अच्छे यंगर जनरेशन में मैंने देखा है, बॉयज है गर्ल्स है, बहुत अच्छे गाते हैं
1: सीख रहे हैं।
0: लेकिन इतना ही बात है कि जैसे पुराने जमाने में तालीम एक बात होती है, वो तालीम नहीं पा सकते वो, और वो तालीम अच्छी तरह से पाना चाहिए, उसने देखना चाहिए कि भाई हम जो करते हैं वो ठीक तरह से करते हैं कि नहीं।
1: आपकी बातचीत में मैं इन बातों का पता चला कि एक तो निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है, एकाग्रता और साधना,
0: ये सब बातों पे ही निर्भर है ये कला। अगर कोई निष्ठा नहीं रखेंगे, अपने गुरु से सीखते हैं लेकिन गुरु से निष्ठा नहीं रखते हैं, तो ये तो बात चलेगी नहीं।
1: व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, शंकर जयकिशन का संगीत और बोल शैलेंद्र के।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर।
0: बस कुछ ही पलों के बाद।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अमर फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: तक कितने नमक हराम।
1: नास्तिक फिल्म का ये गीत श्री रामचंद्र और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजों में आपने सुनी। कवि प्रदीप के ये बोल सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

आर पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मुबारक बेगम की आवाज में ये गीत है रिश्ता फिल्म से, पंडित फानी ने इसे लिखा, के दत्ता का संगीत।

आशा भोसले की आवाज में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब सुनते हैं मिलुआ मंगल फिल्म से ये गीत, जिसमें आवाज है सीएच आत्मा की, डीएन मधुक के बोल, बुल्लो सिरानी का संगीत।

अभी हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुबह के 7:30

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार। महात्मा बुद्ध का कथन है, क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा है मौन का वह एक शब्द जो जीवन में शांति लाता है। ये कथन है गौतम बुद्ध का।

श्रोताओं, नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज 28 जून है। 28 जून वर्ष का 179वां दिन है। लीप वर्ष में यह 180वां दिन है। साल में अभी और 186 दिन शेष हैं। 28 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र डालें तो आज ही के दिन 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, और आज ही के दिन 2005 को रूस द्वारा ईरान के लिए 6 परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की गई थी। आज ही के दिन 2008 को बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक TS नारायण स्वामी को इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। और आज ही के दिन वेतन आयोग ने पत्रकार व गैर पत्रकार कर्मचारियों को 8 जनवरी 2008 को मूल वेतन पर 30% की अंतरिम राहत देने की सिफारिश की थी। और आज ही के दिन 2008 को ही लंदन में एक समारोह में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कुइयां जान के लिए 14वां अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान प्रदान किया गया था। अब नज़र डालते हैं उन व्यक्तियों पर जो आज के दिन इस दुनिया में पहला कदम रखा यानी जन्म लिया। इसमें पहला नाम आ रहा है 1976 को जन्मे जसपाल राणा का, जो कि सुप्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध निशानेबाजी रहे। जसपाल राणा का जन्म आज ही के दिन 1976 को हुआ था। आज ही के दिन जन्म हुआ था 1921 को PV नरसिंह राव का, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिनके याद में ही गरीब दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म आज ही के दिन 1921 को हुआ था। और आज के दिन जन्म हुआ था शिव प्रसाद गुप्त का, जो हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे। शिव प्रसाद गुप्त का जन्म आज ही के दिन 1883 को हुआ था। आज ही के दिन जन्म हुआ था मरियप्पन थंगावेलु का, जो भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी है। उनका जन्म आज ही के दिन 1995 को हुआ था। अब नज़र डालते हैं निधन हुए व्यक्तियों पर। उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जो आज के दिन इस दुनिया को छोड़ चले गए, अलविदा कह गए। आज 1972 में PC महालनोबिस, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद रहे। PC महालनोबिस का निधन आज ही के दिन 1972 को हुआ था। और महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के सैन्य अधिकारी रहे कैप्टन नीके झाकू का भी निधन आज ही के दिन 1999 को हुआ था। आज ही के दिन निधन हुआ था अमर गोस्वामी का 2012 में, जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार थे। उनका भी निधन आज ही के दिन 2012 को हुआ था। श्रोताओं, जैसे कि पहले भी मैंने कह चुका हूँ कि 28 जून के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में, तो आज हम मना रहे हैं गरीब दिवस, PV नरसिम्हा राव का जन्म दिवस।

के अवसर पे आज गरीब दिवस है। इसी कड़ी में सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दाता से। महेंद्र कपूर, मनहर उदास और साधना सरगम ने इसे गाया है। गीत अनजान का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, अब इसी गीत के बाद अब नज़र डालते हैं आज के सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों पर।

समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग में सिपाही प्रचालक की लिखित परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षक सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी को ब्रेकिंग की परीक्षा रविवार को यानी आज एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को विधि व्यवस्था संधारण हेतु मरकजी मुहर्रम कमेटी अनुज्ञप्तिधारी ताजिया अखाड़ा एवं नगर पूजा समिति के साथ एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक रोहता सहित वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी मरकजी मुहर्रम कमेटी अनुज्ञप्तिधारी ताजिया अखाड़ा के खलीफाओं एवं नगर पूजा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए की गई।

सासाराम नगर निगम क्षेत्र में पुरानी जीटी रोड पर बने डिवाइडर अब आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। महज 2 महीनों में ही यहां 4 बड़ी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, जिसके नियंत्रित हाई स्पीड ट्रक सीधे डिवाइडर पर चढ़ गए और भारी जान माल की क्षति हुई। सिर्फ बड़े वाहन ही नहीं बल्कि शहर में अलग अलग मोड़ों पर डिवाइडर से टकराकर पिछले 2 माह में 10 से ज़्यादा बाइक सवार हाथ पैर तुड़वाकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। सासाराम जवाहर नवोदय विद्यालय नावाडीह रोहतास में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं की विज्ञान संकाय में नामांकन के लिए आवेदन 28 जून से शुरू होगी। प्राचार्य जय प्रकाश चौधरी ने बताया कि यह विशेष अभियान जिले के छात्रों को विज्ञान संकाय में प्रवेश देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आवेदन के लिए शर्तें की गई है। अभ्यर्थी ने रोहतास जिले के मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 10 की परीक्षा पास की हो, कुल अंक 60% या उससे अधिक हो। विज्ञान में 60% या उससे अधिक अंक जरूरी है, गणित में भी 60% या उससे अधिक अंक जरूरी है। नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए की ठगी के आरोप में जेल भेजे गए तिलौथू स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मैकू राम को निलंबित कर दिया गया है। डीईओ मदन राय की अनुशंसा पर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी विजय कुमार पांडे ने निलंबन की कार्रवाई की।

कैमूर जिले में कोई भी सरकारी शिक्षक या शिक्षिका किसी भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों की निजी तौर पर बच्चों को ट्यूशन देने या किसी भी अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थान से जुड़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर इसे शिक्षक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और दोषियों शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमूर जिले में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन लेकर उद्योग नहीं लगाने और लोन की किस्त नहीं चुकाने के मामले में 500 लघु उद्यमी को नोटिस जारी किया गया है। जिले में 61 लोगों पर सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी विभाग ने कर ली है, जबकि 17 लोन बकायेदार पर नीलामी पत्र बाद किया जा चुका है, जिसके तहत कुल परियोजना राशि 12% ब्याज समेत वसूल किया जाएगा। कैमूर जिले में भी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा रविवार को कैमूर में 15 केंद्रों पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के आयोजन की गई है। परीक्षा के स्वच्छ कदाचार मुक्त पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैमूर में 15 केंद्रों पर 7,920 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, उड़न दस्ता दल, जोनल दंडाधिकारी एवं स्टैटिक दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर दी गई है। इसी के साथ सुनते हैं एक और गाना विनोद राठौर और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, शिव हरि का संगीत है, फिल्म है चांदनी।

अभी आपने सुना चांदनी फिल्म का ये गाना विनोद राठौर और आशा भोसले की आवाज़ों में। श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंचते हुए नज़र डालेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियों पर।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: नजर डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। लगभग सभी अखबारों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग खबरें को प्राथमिकता देते हुए मुख्य पृष्ठ पर जगह दिया है। पहली खबर लेते हैं दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्राथमिकता दिया है जो राम मंदिर, राम जन्मभूमि की मुद्दा छाए हुआ है। इसके अखबारों के पहले पन्ने पर लिखता है अटकलें पर विराम, चंपत राय व अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला उजागर होने के बाद से सवालों के घेरे में चल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। और खबर दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण भी इस खबर को प्राथमिकता देते हुए पहले पन्ने पर जगह दिया है। लिखता है नीट के बाद अब महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक। NEET UG के छात्र फीस वापसी के लिए अभी भी कर सकते हैं आवेदन। NEET UG के छात्र फीस वापसी के लिए अभी भी आवेदन कर सकते हैं। 21 जून को दोबारा हुई इस परीक्षा के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब तक फीस वापसी के लिए आवेदन नहीं कर सकने वाले, अपने आवेदनों को पूरा नहीं भर पाने वाले या नो रिफंड का विकल्प भरने वाले छात्रों को फीस वापसी के लिए आवेदन का एक और मौका दिया गया है। छात्र अब 30 जून को नए सिरे से फीस वापसी का आवेदन कर सकते हैं। इस खबर को प्राथमिकता दिया है दैनिक जागरण ने। अगली खबर लेते हैं प्रभात खबर से। प्रभात खबर लिखता है मेडिकल स्टूडेंट बायोमेट्रिक कर्मी बन सेंटर में घुसा, झारखंड के फर्जी छात्रा को पकड़ाने पर हुआ खुलासा। बिहार के लखीसराय जिले में 21 जून को हुई नीट पुनर्परीक्षा में गिरोह के काम करने का बेहद शातिराना तरीके का खुलासा हुआ है। इस फर्जीवाड़े का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सुरक्षा में सेंधमारी का था। परीक्षा केंद्रों पर अंगूठे का निशान जांचने के

लिए जिस निजी कंपनी को बायोमेट्रिक हाजिरी का सरकारी टेंडर मिला था उसके मालिक से गिरोह की पहले ही सेटिंग थी। मेडिकल स्टूडेंट बायोमेट्रिक कर्मी वन परीक्षा केंद्र में घुसा था। झारखंड के गिरिडीह में की फर्जी छात्रा ने पकड़े जाने के बाद फर्जी सर्टिफिकेट का खुलासा हुआ। प्रभात खबर के हवाले से एक खबर है, लिखता है कल से पूरे बिहार में झमाझम बारिश के आसार। बिहार में भीषण गर्मी और उसम से जल्द राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार से राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय होने लगेगा। 29 जून से 2 जुलाई तक पूरे बिहार में व्यापक बारिश का पूर्वानुमान लगाई गई है।

बिहार में भीषण गर्मी और उस सम से जल्द राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार से राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय होने लगेगा। 29 जून से 2 जुलाई तक पूरे बिहार में व्यापक बारिश का पूर्वानुमान लगाई गई है। अगली खबर लेते हैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान लिखता है विश्वविद्यालय लंबित डिग्रियां बांटने को चलाएंगे अभियान, और हिंदुस्तान भी इस बारिश वाली खबर को प्राथमिकता देते हुए अपने तरीके से लिखता है राज्य में कल से 2 तक झमाझम बारिश। आखिरी खबर दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर लिखता है 9,334 गांवों को खतियान गायब, भू माफियाओं ने फाड़ दिए पन्ने। बिहार में जमीन सर्वे का काम बड़ी चुनौती में फंस गया है। राज्य के 38 जिलों के 45,000 गांवों का सर्वे होना है, लेकिन 9,334 मौजों के कैडस्ट्रल खतियान सरकार के पास नहीं है। इस खबर को प्राथमिकता दिया है दैनिक भास्कर ने, और दैनिक भास्कर ने भी बारिश वाली खबरों को प्राथमिकता देते हुए लिखता है अगले 2 दिन तक ऐसे ही रहेगी गर्मी, 30 जून से होगी बारिश, मिलेगी राहत। श्रोताओं, अब इसी के साथ दीजिए इजाजत कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से। अपने रेडियो दोस्त विनोद को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

अभी हमारे श्रोता प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत

0: लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो टीईटी की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले टीईटी के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर

या ये श्रोता है रंगीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो लीजिए सुनिए अपने मन पसंद का यह गीत मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म भ्रष्टाचार से।

कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद अजीज़ अलका याग्निक की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है इज्जतदार, सुनना चाहा है आप सबों ने। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ये श्रोता हैं इसी गाने के ख्वाहिशमंद। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ये श्रोता हैं। गोकुल चौक गंगा जला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्कीवाली, फलनाजा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गाना फिल्म इज्जतदार से।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनेंगे। आप सबों की फरमाइश पर भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अस्मिता रेडियो रिपोर्ट गुरु भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, मुरली छत्री, श्रीमती कविता क्षत्रिय, मिथिलेश यदु, दशरथ साहू, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी बैदेही जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी, ये श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। प्रफुल्ल चौक नहोना से आप हैं धर्मराज सिंह, भरत सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, जयनाथ सिंह, हृदयानाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल सिंह, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। प्रफुल्ल चौक से आप भी वहीं से हैं पीयूष कुमार, पूजा, प्रशांत, सुशांत, शुभ कुमार, उत्तम कुमार सिंह राजपूत और उनके मित्रगण। न्यू एरिया सासाराम से आप हैं मुन्ना सिंह, गुड्डन देवी।

आदर्श, ओम कुमार, अरुण कुमार, नंदनी कुमारी और विनय कुमार। कैथोलिक चर्च न्यू एरिया गली नंबर 6 से आप हैं सुजयकांत सिंह, अनुज, अंकित, वीना सिंह और उनके प्यारे दादा दादी। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने इसे गाया है। असद भोपाली के लिखे गीत को राम लक्ष्मण ने संगीत दिया है। फिल्म है मैंने प्यार किया।

0: चलो।
1: कहाँ?
0: एडमिशन कराने। आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली पड़ाव में अब हम सुनते हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म है 20 साल बाद, सुनना चाहा है आप सबों ने। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, अजफर हामिद, मशकूर आलम और शमा परवीन। आप हैं नरहन स्टेट से, आप हैं नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, आराध्या, विनीता मिश्रा और स्नेहलता जैन। ये श्रोता हैं इसी गाने के ख्वाहिशमंद। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से भाई कारी, राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिकी, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्र, जयंत कुमार बैरागी। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म 20 साल बाद से।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।

कार्यक्रम के आखिरी में सुन लेते हैं एक और गाना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के ही आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है आज़ाद देश का गुलाम। सुनना चाहा है आप सबों ने। कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। ये श्रोता हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख। कलेर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निगहत परवीन, नूर महल महसूल से आप हैं हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबिया नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। ये आखिरी खत है थाना मोड़ गढ़नो

हर होताज से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शवाना और शहबाज का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आखिर में अपने मन पसंद का यह गाना आज़ाद देश का गुलाम फिल्म से।

श्रोताओं, आप आकाशवाणी सासाराम से सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। श्रोताओं, इसी गीत के साथ चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी

0: का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया पंचायत से करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। और केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आज बिहार पुलिस की 993 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। राजस्व सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस माह कार्यक्रम का विषय है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड की टेटिया पंचायत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पंचायत विकास शिविर का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत समेत सुशासन युक्त पंचायत का लक्ष्य हासिल करना भी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण भी सुना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। श्रद्धालुओं को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनका टूर ऑपरेटर पूरी तरह पंजीकृत और अधिकृत हो। इस बीच 20 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था नाथुला दर्रे पर भारत चीन सीमा के रास्ते चीन में प्रवेश कर गया। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने

0: सभी विश्वविद्यालयों को समय पर डिग्रियां बांटने का निर्देश दिया है। उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को छोड़कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे निर्देश में कहा है कि डिग्री की छपाई और उनके वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने लंबित डिग्रियों को अभियान चलाकर वितरित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कहा कि 30 सितंबर तक सभी लंबित डिग्रियों को छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दिया जाए। राज्य सरकार ने जमीन मापी की नई दर तय की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य मापी के लिए प्रति खेसरा ₹1,000 तथा अधिकतम ₹4,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹2,000 और अधिकतम ₹8,000 शुल्क देना होगा। विभाग ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में सामान्य मापी का शुल्क प्रति खेसरा ₹2,000 तथा अधिकतम ₹8,000 तय किया गया है। वहीं तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹4,000 और अधिकतम ₹18,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ ही अमीन को आवेदन प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर मापी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमआई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एमएसएमआई क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। इस अवसर पर एमएसएमआई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से एमएसएमआई क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
1: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमआई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और पुस्तकों का भी विमोचन किया। बिहार पुलिस ने स्पेशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट अपलोड करने वाले 128 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 4 महीनों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 सोशल मीडिया हैंडल, आईडी और चैनलों को हटाया गया है। पुलिस ने कहा है कि आम जनता की जागरूकता और सहभागिता से फर्जी और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में 544 केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 993 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा। परिषद ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ई प्रवेश पत्र के साथ वैध पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। इधर पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा विशेष ट्रेन चला रहा है। गन्ना विकास मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को अब मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 गन्ना फैक्ट्री समेत कई कल कारखाने खोले जाएंगे।
2: मेरी सरकार ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा। आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे और बिहार से पलायन को रोकना है तो सरकार

0: के 25 गन्ना फैक्ट्री समेत कई कल कारखाने खोले जाएंगे।
1: मेरी सरकार ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा। आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे और बिहार से पलायन को रोकना है तो सरकार यहीं पे रोजगार देने का, बिहार में ही रोजगार देने का संकल्प लिया है और जनता के वादे पर खड़े उतरेगी।
0: राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों पर अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि अपार आईडी के बिना परीक्षा के लिए निबंधन नहीं कराया जा सकेगा। गौरतलब है कि अपार आईडी छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक पहचान है, जो उनकी पूरी शिक्षा का रिकॉर्ड सुरक्षित और सुगम बनाती है। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कल रात 8 बजे से आज रात 8 बजे तक विद्युत संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति नियमित बनी रहेगी। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और सिवान समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, बांका, रोहतास और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर दोपहर बाद तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मधेपुरा के पुरैनी में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सुबह पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थान पर हल्की बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हाट सरैया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बेतिया एसडीपीओ रजनीशकांत प्रियदर्शी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र के भाग कोहलिया गांव में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 31 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक 11,25,606 सोलर लाइट लगाई जा चुकी है। पंचायती राज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लक्ष्य का लगभग 96% है। पटना जंक्शन से रेलवे पुलिस ने यात्रियों से ठगी करने वाले अंतर राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग नकली नोटों का बंडल दिखाकर यात्रियों को ठगते थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से दरभंगा के रहने वाले कृष्णा राय उर्फ शान को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे शहजाद भट्टी को संवेदनशील जानकारी भेजता था। वो पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से शहजाद भट्टी के संपर्क में था। कृष्णा राय के खिलाफ 24 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। गौरतलब है कि आज के मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को टीम 11 में जगह मिलने की उम्मीद है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पटना का मिलर स्कूल प्रेरणा का मॉडल बनेगा। दैनिक जागरण ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर लिखा है कि अटकलों पर विराम, चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार के परीक्षा माफिया ने अब महाराष्ट्र TIT के पेपर लीक कराया, 3 गिरफ्तार। प्रभात खबर ने बिजली से जुड़ी खबर पर लिखा है, 6 जिलों में बिना ग्रिड मिलेगी निर्बाध बिजली। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, PMCH प्रचार्य हटाए जाने के मामले की होगी हाई लेवल जांच, पूर्व प्रचार्य की प्रेस वार्ता से स्वास्थ्य विभाग नाराज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे।

0: प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया पंचायत से करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। और केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आज बिहार पुलिस की 993 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:06 होने वाले हैं। सुनेंगे आज प्रसारित होने वाले संक्षिप्त कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका सुनेंगे और कार्यक्रम आज के फनकार विविध भारती से सुनेंगे सुबह के 9:30 पर। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 10 के बाद बाल श्रोताओं का कार्यक्रम अंकुर सुनेंगे। इसमें चर्चा होगी भाषा और अक्षरों की महत्व। संकलन एवं वाचन वंदना कुमारी का होगा, प्रस्तुत कुमार होंगे संतोष कुमार। इस कार्यक्रम को सुबह 10:05 पर रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का लोक माधुरी सुन पाएंगे सुबह के 10:30 पर और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग सरसधार सुनेंगे 10:45 पर। 10:55 पर पुनः चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से सुनेंगे मन की बात। समय रहते सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। आप सबों के सेवा में हाजिर होंगे पुनः 5:10 पर शाम में कार्यक्रम वंदन के साथ। विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुन पाएंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:00 से। भोजपुरी समाचार बुलेटिन शाम 6:05 पर हम इसे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर का समय होगा शाम 6:10 पर और भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत सुनेंगे शाम 6:40 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल सुन पाएंगे शाम 7 बजे से, और सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुनेंगे शाम 7:15 पर। आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का समय होगा शाम 7:25 पर।

ई मनपसंद ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम सुन पाएंगे शाम 7:50 पर और शाम 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे।

भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा का समय होगा रात्रि 9 बजे, और आज हम महफिल को सजाएंगे गजलों से रात्रि 9:15 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, और हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसरंग सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने का समय होगा रात्रि 10:30 पर, और अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान लगाएंगे रात्रि 10:55 पर। रोजाना की तरह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी व अंग्रेजी समाचार रात्रि 11 बजे से, सभा का समापन 11:10 पर।

अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम गीत मालिका का पहला गीत सुनते हैं, आग से खेलेंगे फिल्म से।

इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, अनु मल्लिक का संगीत है, फिल्म है आवारगी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम गीत मालिका के आखिरी पड़ाव में सुनते हैं नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल के स्वर में खूबसूरत सा गाना। रविंद्र रावल ने इसे लिखा है, बाबुल बोस ने संगीत दिया है। फिल्म है जीना तेरी गली में।

नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल के गाए इसी गाना के साथ ही कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार थोड़ी देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है। आया, आया।

la garda उड़ा दी है। अरे गर्दा उड़ा दी है। बेटा

28 जून साल 1971 दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था,

नित्यानंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलिए कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की यह डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया।

इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

मंगल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं, जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेट्स मनु, रांझणा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओं, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर, देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शेफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार।

0: लगातार दिल्ली।
1: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के एक महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमान ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। ये टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने होर्मुज के ठीक उत्तर में विस्फोटों की सूचना दी है। किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की युदाई ओकिमोतू को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीन ताइपे के सूली यांग से होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसन से हार गई। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष टी20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय।
3: समाचारों से पहले हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूर्वाह्न के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं बाल श्रोताओं का कार्यक्रम अंकुर। संकलन एवं वाचन है वंदना कुमारी का। प्रस्तुत करता है संतोष कुमार।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर के आज के अंक में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी को आपकी वंदना दीदी का बहुत सारा प्यार।
1: आपको भी हम बच्चों का नमस्कार।
0: अच्छा बच्चों, मान लीजिए किसी बात को दूसरों को बतानी हो या कोई जानकारी ही देनी हो तो आप कैसे बताएंगे?
2: वो चीज दिखा के बता देंगे।
0: पहाड़ क्या होता है यह समझाने के लिए अगर पहाड़ को ही सामने हाजिर करना पड़ता तो कितने परेशानी में पड़ते आप?
2: दीदी, किसी को समझाने या बताने का सबसे अच्छा उपाय इशारे से बताना है।
0: आपका कहने का अर्थ यह है कि बताने की सबसे अच्छी तरकीब हमारा शरीर है, यानी कि हथेली पर कोहनी रखकर बगुला दिखा सकते हैं, अंगूठा दिखा सकते हैं, गर्दन हिलाकर हाँ या ना बता सकते हैं, यानी कि अंगों के इशारे से बहुत कुछ बता सकते हैं। पहाड़ भी पत्थर न दिखाकर मुट्ठी से बता सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए यह सोचिए कि आप हैं बगल के कमरे में, हमें आपकी जरूरत है। हाथों के इशारे से बुलाएं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन तालियां पीट दें तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। मतलब यह निकला कि इशारे की बजाय आवाज करने में कहीं ज्यादा सहूलियत है।
2: जी दीदी, आवाज निकाल कर ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं।
0: बच्चों, जानने की चीजें इतनी हैं कि उनका अंत नहीं। उन्हें जानने के लिए आवाज भी उतनी ही तरह की चाहिए। तालियों से आखिर आप

0: कितनी तरह की आवाज़ निकाल सकते हैं, कोशिश करके देखिए तो, ज़्यादा तरह की आवाज़ें नहीं निकाल सकेंगे। मान लीजिए आप कुछ खा रहे हो, ऐसे में किसी दोस्त से आप पूछना चाहें कि खाएंगे आप, ताली बजाकर यह पूछना पड़े तो सोचिए भला क्या हालत होगी।
1: फिर तो दीदी आखिर हम अपनी बात कैसे बताएंगे?
0: इसका मतलब यह है कि कुछ बताने का उपाय असल में आदमी के हाथों में नहीं, मुंह में है। मनुष्य के फेफड़ों से जो हवा आती है उसे गले, जीभ, तालू, दांत और होठों से लगाकर या मुंह में इधर उधर चलाकर न जाने कितनी तरह की आवाज़ें वह निकाल सकता है। हाथ बंधे भी हों तो मुंह से आवाज़ निकालने में बाधा नहीं पड़ेगी। तो इशारे की बजाय आवाज़ से कुछ बताना सभी लिहाज से ज़्यादा आसान है। आवाज़ से कुछ बताने का नाम ही भाषा है। टिप टिप या रिमझिम की आवाज़ से घर बैठे ही हम जान लेते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, मगर यह टिप टिप क्या बारिश की भाषा है? नहीं, वास्तव में आवाज़ भाषा नहीं होती, बल्कि कुछ बताने के लिए की गई आवाज़ भाषा कहलाती है। आवाज़ होना और आवाज़ करना दोनों में फर्क है। पशु पक्षी भी तो आवाज़ से अपने मन की बात बताया करते हैं। अपने बछड़े को न देख पाए तो गैया रंभाती है, कौवे काँव काँव करके अपने संगी साथियों को जमा करते हैं।
1: इसका मतलब यह हुआ कि पशु पक्षी की भी अपनी भाषा है।
0: नहीं बच्चों, पशु पक्षियों की आवाज़ होती है भाषा नहीं। उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती, जैसे काँव काँव, भों भों या पीहू पीहू इत्यादि। जैसे चोट लगने पर हम उफ कर बैठते हैं, अच्छा लगने पर वाह और झिड़कने के लिए धत कहा करते हैं। मनुष्य अगर उफ, आह, धत के सिवाय और कुछ बोल नहीं पाता तो हम यह हरगिज नहीं कह सकते कि मनुष्य की अपनी कोई भाषा है। तरह तरह की आवाज़ों को पिरोकर भाव को साफ साफ जाहिर कर देना ही भाषा का काम है। बच्चों, जिस तरह एक घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, भाषा के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। भाषा के लिए वे चीज़ें हैं शब्द या बात। बगैर शब्द के भाषा नहीं हो सकती। तरह तरह की आवाज़ों से बनता है एक एक शब्द, जैसे प, अ, आ, ड़। इतनी अलग अलग ध्वनियों को गूंथ कर एक शब्द बना है, पहाड़।
1: अब यह हमें साफ समझ में आ गया है कि पहाड़ बताने के लिए सिर्फ पहाड़ शब्द ही काफी है।
0: हाँ बच्चों, कोई चीज हो, चाहे भाव हो, जो भी बताना समझाना हो, शब्द से ही उसे समझाया जा सकता है।
1: हाँ दीदी, शब्द से कुछ बताने के लिए समय भी कम लगता है, धीरे भी बात करिए तो 1 सेकंड में।
0: शब्दों के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं या बताते हैं, जो कि भाषा कहलाती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि हिंदी हमारे देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? हमारे देश में और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं।
2: ये भाषाएं कौन-कौन सी हैं दीदी?
0: आइए जानते हैं कि हमारे देश में और कौन-कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी, असम में असमिया, राजस्थान में राजस्थानी। इसी तरह से हमारे पूरे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आपको पता है विश्व में भी अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या है और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: जी दीदी, भाषा से ही अपने भाव और मन के विचारों को दूसरों को बताते हैं।
3: हाँ दीदी, और दूसरे के बातों को समझते भी हैं।
0: बिल्कुल सही, भाषा को इसीलिए तो अभिव्यक्त

व्यक्ति का साधन कहा जाता है। भाषा के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। वह भाषा ही तो है जिससे हम समाज के रहन सहन तथा विशेषताओं से परिचित होते हैं, नए नए विचार आते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होती रहती है। अभी हम भाषा पर, अक्षरों पर बातें कर रहे थे। आइए शब्दों से, अपनी प्रार्थना से हम उन ईश्वर की स्तुति करें, उन्हें नमन करें जिनकी कृपा से हम इस संसार को देख पाते हैं। हे ईश्वर, आप ही का दिया हुआ ये जीवन है, यह संसार है, सभी प्राणियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम सब अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से चलते रहें।

0: इस सुमधुर प्रार्थना के बाद लेते हैं यहीं पर एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ संदेश।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के
5: नाम। दादी, आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या?
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम के इस भाग में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपने माता पिता या बड़ों की बातें मानकर अपने काम को समय पर करके न सिर्फ आप उनके प्यारे दुलारे बन सकते हैं बल्कि आपको बहुत सारी खुशियां भी मिल सकती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था दो बहनों शालू और नीतू के साथ। सुनना चाहेंगे आप दो बहनों की कहानी?
8: जी दीदी।
0: बच्चों, किसी शहर में दो बहनें रहती थीं, शालू और नीतू। शालू और नीतू जुड़वा बहनें थीं। वे चौथी कक्षा में पढ़ती थीं। वैसे तो दोनों जुड़वा थीं लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। शालू खाना खाने में बहुत आनाकानी करती थी जबकि उसकी बहन नीतू हर प्रकार की सब्जी और फल खाती थी। शालू को कभी कभी माँ से डांट पड़ती, दादी भी समझाती, पर वह उनकी नसीहत को एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। उसे तो बाजार का फास्ट फूड पसंद था। एक बार की बात है कि शालू और नीतू को स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। दोनों बहनों को नृत्य करना तो वैसे बहुत पसंद था। शालू तो नृत्य के नाम से ही झूम उठती थी। वह प्रतिदिन स्कूल समाप्त होने के बाद 2 घंटे नृत्य का अभ्यास अवश्य करती किंतु ढंग से भोजन न करने के कारण कमजोर रहने लगी। वह भूख लगने पर कभी पिज्जा खाती, कभी बर्गर, कभी चाउमीन खाती तो कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीती। घर की बनी दाल, चावल, सब्जी, मछली या दूध से तो वह कोसों दूर रहती जबकि नीतू माँ द्वारा पकाया हुआ पौष्टिक भोजन ही करती। अधिक मेहनत करने और खाने के प्रति लापरवाही के कारण शालू बीमार हो गई। अब तो वह नृत्य भी नहीं कर पाती थी। उसके पिता उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि बहुत ज़्यादा बर्गर, पिज्ज़ा और चाउमीन खाने से शालू का पेट खराब हो गया है। उसे दवा लेने के साथ साथ पूरा आराम भी करना होगा। शालू बहुत दुखी हुई क्योंकि वह अब स्कूल के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकती थी। स्कूल से लौटकर नीतू शालू को हर बात बताती। वह कहती कि तुम्हारे ना हो

0: देखने से सब मुझसे भी तुम जैसा अच्छा नृत्य करने की उम्मीद करते हैं। यह जानकर शालू बहुत दुखी हो जाती। बीमारी के कारण तो वह ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी, फिर नृत्य क्या करती। धीरे धीरे स्कूल के वार्षिक उत्सव का दिन भी आ पहुंचा। उस दिन नीतू बहुत खुश थी। शाम को उसके माता पिता स्कूल जाने लगे तो शालू ने भी उनके साथ जाने की जिद की। पिताजी ने बहुत मना किया, यह भी कहा कि इतनी देर बैठे रहने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मगर शालू जाने की जिद पर अड़ी रही। स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 घंटे तक चला। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों ने अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, किंतु उसकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया नृत्य तो सबसे अच्छा रहा। नीतू बीचों बीच शालू वाली जगह पर नृत्य कर रही थी। शालू का शरीर भी नृत्य करते बच्चों की तरह थिरकता जा रहा था और हाथों से बज रही थी तालियां। वह सोच रही थी कि यदि आज वह स्वस्थ होती तो बड़े उत्साह से कार्यक्रम में हिस्सा लेती। शालू को दादी की नसीहत का महत्व समझ आ गया था। कुदरत की बनाई हर सब्जी, हर फल का स्वाद चखो, सेहत बनाओ, तभी तन और मन दोनों चुस्त रहेंगे। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो अपने माता पिता और दादी की बात मानेगी। अब वह भी नीतू की तरह माँ का बनाया पौष्टिक भोजन खाने लगी। सचमुच अब वह बदल गई थी। बड़ों की बात मानने के कारण वह पहले से स्वस्थ और सभी की प्यारी भी बन गई थी। तो बच्चों, आप भी यह तय कर लें कि बड़ों की बातें मानेंगे, घर का बना पौष्टिक खाना खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। तय कर लिया ना आपने?
1: जी दीदी।
0: अब हम सभी आनंद लेंगे आपकी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी आवाज में कविता, पहेली, गीत वगैरह का। आप सब तैयार हैं ना इसके लिए?
1: जी दीदी।
0: सबसे पहले आप बता दीजिए कि आपका नाम क्या है?
2: रिद्धि पांडे।
0: अच्छा, बता दीजिए क्या सुनाइएगा?
2: प्रार्थना।
0: सुनाइए।
2: तीन ईश्वर

0: फिर होना।
1: में बहुत ही मधुर आवाज में रीति ने प्रार्थना सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और आपका क्या नाम है?
2: प्रिंस कुमार।
1: क्या सुनाएगा?
2: चुटकुला
1: सुनाइए।
2: टीचर छात्र से तुम्हारे क्या नाम है? छात्र रूप प्रकाश। टीचर अंग्रेजी में उत्तर दो। सर माई नेम इज फेस लाइट।
1: बच्चों, प्रकृति हमें बहुत सारे संसाधन उपहार में देती है, ऐसे उपहार जिनके बिना जीना कठिन है। धरती, आकाश, हवा, जल, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आदि सभी हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी हैं। जन्म से मृत्यु तक धरती ही अपनी ममतामयी गोद में हमें शरण देती है। पेड़ पौधे स्नेह की शीतल छाया देते हैं। पक्षी कूजते गाते कानों को प्रिय लगने वाले मधुर संगीत देते हैं। और आकाश वर्षा के जल से हमारी प्यास मिटाने की व्यवस्था करता है। यानी प्रकृति हमें वो सब कुछ देती है जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, लेकिन हम अपनी आदतों और अधिक से अधिक लाभ लेने और प्राकृतिक चीजों की उपेक्षा करके पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। इसीलिए तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधे लगाना पुण्य माना जाता है। पीपल और बरगद जैसे कई वृक्षों की तो पूजा भी होती है।
3: इसीलिए तो दीदी वृक्ष को मनुष्य का मित्र

0: गया है।
1: बिल्कुल, वृक्ष हमारे मित्र तो होते ही हैं, साथ ही ये प्रकृति की अनमोल धरोहर भी होते हैं। इसीलिए हर किसी को पेड़ लगाना चाहिए, तभी हम अपनी धरती को हरा भरा बनाए रख सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ न काटे जाएं।
2: बिल्कुल दीदी, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। हम सब तो यही कहेंगे, पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। छाया हमको देते हैं, फल हमको देते हैं, बाढ़ से हमको बचाते हैं, प्रदूषण दूर हटाते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।
1: हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। वृक्षों के महत्व को बतलाती आप सब बच्चों की ये कविता बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ समय हो गया है कि हम बता दें अपने श्रोता बच्चों को कार्यक्रम का पता। तो बच्चों, कार्यक्रम संबंधी अपने विचारों को पत्र में लिखें और भेज दें हमें इस पते पर। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी पते पर भेजे गए आपके पत्रों का रहेगा हमें बहुत ही इंतज़ार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाज़त। जय हिंद बच्चों।
2: जय हिंद दीदी।

अभी अपने बाल श्रोताओं का कार्यक्रम अंकुर सुन रहे थे। संकलन एवं वाचन था वंदना कुमारी का, प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वाहन के 10:30 हुए हैं। सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं कशिश सिन्हा की आवाज़ में खूबसूरत सा लोकगीत। इस पारंपरिक लोकगीत को पंडित ज्वाला प्रसाद ने संगीत दिया है। एल्बम है राम नाम लड्डू।

कार्यक्रम लोक माधुरी के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत शारदा सिन्हा की आवाज़ में। परदेसिया बलमुआ एल्बम से इसे लिया गया है। पारंपरिक इस गीत को शारदा सिन्हा ने ही संगीत दिया है। एल्बम है परदेसिया बलमुआ।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीत कार्यक्रम लोक माधुरी। अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। कार्यक्रम रसधार का पहला और आखिरी गीत ऋतु राज की आवाज़ में। पिया मधुसूदन ने इस गीत को लिखा है, शेखर शर्मा ने संगीत दिया है। एल्बम है पूछे भरत कैकई माई से।

0: ऋतु राज के गाए इसी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग के साथ ही कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वाहन के 10:55 हुए हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से थोड़ी देर में।
1: ये आकाशवाणी है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद

0: रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य

से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है।

योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं।

पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित

सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या

कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं।

0: इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहम् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमानन क्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतनशक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भरभारतस्य च सङ्कल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO

0: उपक्रमाणां विषये माम् अवश्यं प्रेषयन्तु। स्वविचारान् स्वपरामर्शान् च निरन्तरं प्रेषयन्तु। सम्भवमेतत् यत् भवतां समीपे आरब्धः कश्चन लघुः उपक्रमः सम्पूर्णस्य राष्ट्रस्य प्रेरणा भवेत्। आगामिनि मासे वयं पुनर्मिलिष्यामः। देशवासिनां केषाञ्चन नवीनानां प्रयत्नानां चर्चां करिष्यामः। तावत् भवन्तः स्वस्य स्वपरिवारस्य च परिचर्यां कुर्वन्तु। आम्, जलसञ्चयः तु करणीय एव। वर्षा जलस्य एकः एकः अपि बिन्दुः अस्माभिः रक्षणीयः। कैच द रेन इति अभियाने शैथिल्यं न कदापि आनेतव्यम्। अतः मम विशेषः आग्रहः अस्ति यत् वर्षाजलस्य बिन्दुं बिन्दुं संरक्षामः। बहुधन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभि आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
3: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
3: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके

0: नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ रचनाएं। यह है इस कार्यक्रम की पहली पेशकश। जावेद अली की आवाज, फिल्म का नाम आक्रोश, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम में अब सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत। फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले और गाने वाले कलाकार हैं कार्तिक, महालक्ष्मी और अंतरा मित्रा।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: प्रीतम के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना है, आवाजें आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की, फिल्म का नाम दे दनादन।
4: हर हजार जगाती है कयामत कोई।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज हम आपको संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ फिल्मी रचनाएं सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का गाना। इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और धुन प्रीतम की।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्मों ए दिल है मुश्किल का ये गीत। आइए सुनते हैं हिमशिखा और अरिजीत सिंह की आवाजी। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद, गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जावेद अली और जोजो की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम का संगीत है, सुब्रत सिन्हा का लिखा गीत, कुणाल गंजावाला की आवाज और फिल्म का नाम आंखें।

कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। फिल्म का नाम है बर्फी। इसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और धुन प्रीतम की ही है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

केके की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे संगीतकार प्रीतम की कुछ संगीत रचनाएं।

लीजिए सुनिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह अच्छे हैं? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आप बाहर से हंस रहे हैं लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अलग चल रहा है ना? भाई होता है ऐसा, कई बार हम बाहर से बहुत खुश नजर आते हैं लेकिन भीतर कोई तूफान हमारे बहुत तेजी से चल रहा होता है। लेकिन एक इंसान को अपने स्वरूप को छिपाकर बाहर कुछ और दिखाना पड़ता है। शायद समाज में यही सब चलता है और हम यही तो करते हैं। तो आप में से हमारे बहुत सारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कुछ उथल पुथल भी हमारे चल रही होती है। लेकिन जब हम पूछते हैं कैसे हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। यही है एक कलाकार की एक विशेषता, एक गुण जिसे हम कह सकते हैं। और आपने देखा है कि हिंदी फिल्मों में भी ऐसे कई गीत फिल्माए गए हैं दोस्तों, जहां नायक या नायिका होठ नहीं हिलाते बल्कि कुछ गीत उनके अंतर्मन की आवाज या विचारों के रूप में पार्श्व में बजते रहते हैं, है ना? तो ये फिल्मी पर्दे पर फिल्माए हुए गीत नायक या नायिका के मन की उलझनों और भावनाओं को बिना होठ हिलाए व्यक्त कर जाते हैं। और ये गीत किरदार की तन्हाई और आंतरिक पुकार को, उसके दिल के दर्द को, उसकी सोच को पृष्ठभूमि में बहुत खूबसूरती के साथ बयां करते हुए नजर आते हैं और हमारी आंखें भी भीग जाती हैं। भीगती है ना? तो याद कीजिए वो पल जब आपकी आंखें किसी दृश्य को देखकर, किसी गाने को पर्दे पर चलते हुए देखकर भीगी होंगी। हाँ, आज की जो हमारा टेक्स्ट है, आज का जो टेक्स्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ जो लोग फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं। बहरहाल ये भी आप जान लें कि www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो हमारा आज का टेक्स्ट है, बाहर की दुनिया में कदम रखते ही हम एक मुखौटा पहन लेते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे का, सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने का, लेकिन उस मुखौटे के पीछे हमारे भीतर एक अनवरत युद्ध चल रहा होता है। भीतरी उथल पुथल और इस वैचारिक तूफान से हम विचलित हो जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिनमें नायक या नायिका फिल्मी पर्दे पर इन गीतों में होठ हिलाते हुए नजर नहीं आते, बल्कि ये गीत उनके

अंतर्मन की आवाज या वैचारिक द्वंद्व के रूप में पार्श्व में बजते रहते हैं। तो कौन सी गीत है अब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके संदेश देखे हैं, आप लोगों ने दुनिया भर के गीत हमें लिखकर भेज दिए हैं। जी तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला सुरीला सफर का, और इस सफर में हम सभी साथ हैं, है ना? तो चलिए फिल्म आंधी का ये गीत याद कीजिए, जहां आवाज दे रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार साहब के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन। पर्दे पर संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, कितने अंतर्द्वंद्व उनके भीतर चल रहे होते हैं, और एक दूसरे को वो कुछ इस अंदाज में बिना कुछ कहे कह रहे होते हैं।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म आंधी में। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा हट के काफी रोचक विषय चुना गया है, जिससे सुरीला सफर का कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा और बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत आरंभ से लेकर अंत तक थोड़ा थोड़ा बजता है, वो किसी अभिनेत्री अभिनेता पर फिल्माया नहीं होता। शायद ये बात भी आज कार्यक्रम में शामिल हो, तो चलिए आनंद लेते हैं आज के सुरीले सफर का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज अगर देखा जाए तो मानव का दिखावटी चेहरा और उनके मन को भाव को जानना बहुत कठिन होता है, इसलिए कहा जाता है कि उसके मन में चोर है लेकिन दिखता बहुत शरीफ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गाने बजेंगे, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ जैसे कुछ गाने बजने वाले हैं। और हमने तो आज के सुरीला सफर में आपके साथ चलने के लिए पेटी बांध ली है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अरे तो हमारे साथ सफर में चलिए ना, हम तो सुरीला सफर लेकर जब भी आते हैं तो सारे श्रोताओं से कहते हैं कि चलिए और निकल पड़ते हैं। आप भी इसमें शामिल हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी कहानी लिए चलता है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाती। चेहरे पर सजी मुस्कान अक्सर जीवन की सच्चाई नहीं बल्कि परिस्थितियों से समझौता करने की एक खामोश कला होती है। भीतर विचारों का शोर, भावनाओं का द्वंद्व और अनकहे दर्द का तूफान चलता रहता है, फिर भी हम हर दिन सामान्य दिखने का अभिनय करते हैं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है, अपने संघर्ष को छिपाकर भी उम्मीद का दीप जलाए रखना और हर सुबह फिर से दुनिया का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही देर में सुरीला सफर शुरू होने वाला है लेकिन मन में अभी से अंतर्द्वंद चल रहा है कि आज आप कौन सा गीत सुनवाने वाली हैं। इबारत तो सुबह ही पढ़ लिया था और ये मनोरंजक प्रोग्राम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में बहुत सारे गीत शामिल होंगे लेकिन कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, और आज तो बहुत सारे गीत हमारी पसंद से आपके मिलने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां हमारे श्रोताओं को। जी, जो हम ये म्यूजिक बजा रहे हैं इसमें भी आप गाना पकड़िए कौन सा है, और ये भी वैसा ही गाना है, यानी जहां नायक और नायिका सिर्फ पर्दे पर आते हैं और अपना अभिनय करते हैं लेकिन होठ उनके नहीं हिल रहे होते हैं। तो आज के सवाल नोट कर लीजिए, जब आप कोई फिल्म देखने गए थे आज तक, जो भी फिल्म आपने देखी होंगी, वैसे तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन कभी आपको याद हो कि किसी गीत को, ऐसे ही किसी गीत को जैसा विषय आज हम लेकर आए हैं, पर्दे पर देखकर आपकी

आंखें भर आई हों और छलछला आई हों, या गला रुंध गया हो, या आप रोने से लगे हों, ऐसा कोई गीत जो आपकी याद में शामिल है तो उसका जिक्र करें। मेरे साथ तो फिल्म देखते समय अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी दर्द भरा गीत आया नहीं, आंखें छलछलाने लगती हैं और मन ऐसे लगता है जैसे रो लिया जाए। और एक और सवाल कि आपके भीतर क्या चलता रहता है, आपका अंतर्मन, आपके अंतर्मन की आवाज क्या कहती है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, बाहर आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके भीतर की आवाज क्या है, क्या कभी आपने उसे सुना? कम से कम शब्दों में बताइएगा। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। एसडी बर्मन का संगीत है, कैफी आजमी के बोल हैं, गीता दत्त की आवाज, एक कालजयी गीत है, फिल्म का नाम कागज के फूल।

गीता दत्त को आपने सुना, फिल्म का नाम था कागज की फूल। एक श्रोता लिखते हैं कि पर्दे पर फिल्म की नायिका वहीदा रहमान, वक्त ने किया क्या हजी सितम गाने में हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन और दर्द भरे गानों में से एक है। फिल्म कागज के फूल का ये गीत समय की क्रूरता, अधूरे प्रेम और पहचान के खो जाने की एक अमर दास्तान है। एक प्रसिद्ध निर्देशक और उनकी अभिनेत्री वहीदा रहमान के बीच के अधूरे प्रेम और अलगाव पर आधारित है ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत है ये। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि बज रहे गीत की पार्श्वभूमि में अगर

क्या नायिका लफ्ज हिलाए बगैर फिल्मी पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे गीत ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्यों आ जाती है, आप ढूंढिए, बिल्कुल आराम से मिलने वाले हैं। वैसे जो आपने 10 गीत लिखे हैं उनमें से बहुत सारे गीत मिल रहे हैं, देखिएगा कितने गीत मिलते हैं हमारी पसंद से, है ना। वहीं आप लिखते भी हैं कि कुछ और गीत आते हैं तो जरूर लौटकर आऊंगा। अरे वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम में कौन से गाने होंगे इसकी मुझे बहुत उत्सुकता है, मुखौटे के पीछे की बात तो वाकई दिलचस्प है। भाई मुखौटा तो आपने भी पहन रखा है, जीवन में जरूरी भी है और हम पहनते भी हैं, लेकिन हाँ उस मुखौटे के पीछे अगर हमारा क्रूर रूप है वो गलत है। मुखौटा तो जीवन में हम पहनकर निकलते ही हैं रोज। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर इबारत पढ़कर दिल खुश हो गया, बहुत ही प्यारा खूबसूरत विषय लेकर आई हैं। हिंदी सिनेमा में पार्श्वगीत केवल दृश्यों को भरने का माध्यम नहीं बल्कि ये कथा के विस्तार और पात्रों की अंतरात्मा की आवाज होते हैं। ये गीत अक्सर मौन में छिपी भावनाओं, अनकही तड़प और परिस्थितियों के मर्म को सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचाते हैं। गानों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना भारतीय फिल्मकारों की एक सशक्त शैली रही है जो दृश्य और संगीत के संगम से एक ऐसा भावनात्मक कोलाज बनाती है जो सीधे रूह को छू लेता है। जब पर्दे पर पात्र मौन होते हैं या परिस्थितियां इतनी गंभीर होती हैं कि संवाद कम पड़ जाते हैं तब ये गीत कहानी का भार अपने कंधों में उठा लेते हैं, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में ऐसे कई गीत होंगे जिसमें नायक नायिकाओं के अंतर्द्वंद को उजागर किया गया है और पार्श्व में वो बजते हैं। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, जिसने अधिकतर फिल्में देखी होंगी उन्हें पता होगा। चलिए तो कार्यक्रम में इस सफर में हमारे साथ तो है ना आप। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कला शायद यही है कि वो टूटते हुए भी मुस्कुराना सीख लेता है। दुनिया उसकी मुस्कान देखती है लेकिन उसके भीतर चल रहे युद्ध की आहट केवल उसका अपना मन सुनता है। बाहर से समंदर शांत दिखे ये जरूरी तो नहीं, गहराइयों में तूफानों का बसेरा भी तो होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर का ये जो पोस्ट है हमारे फेसबुक पेज पे आया है, हम थोड़ा लेट हैं लेकिन हम यही कहेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे। नहीं नहीं, आप कहाँ हैं बेवफा, हमने तो कभी ये जिक्र भी नहीं किया कि हमारे श्रोता बेवफा हैं, बल्कि आप तो वफादार हैं, तभी तो इस सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं, है ना। एक श्रोता लिखती है कि सुप्रभात, आज तो दिल को छू लेने वाली इबारत है, मन में जो भाव होते हैं कई बार ऐसे होते हैं किसी को बता नहीं सकते, कभी किसी की याद आती है, कभी कोई घटना याद आ जाती है लेकिन वर्तमान से मेल नहीं खाती। जैसे शादी ब्याह के समय हमारी माँ याद आती है, हंसते हंसाते हमें रोना पड़ता है, फिर सबके सामने छुपकर चुपके से हम अपने मन को शांत करते हैं और किसी को कुछ नहीं कह पाते हैं। बिल्कुल सही कहा, जब बात शादी की चली है तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम बंबई का बाबू। ये गीत सुनने के बाद हमारी आंखें छलछला आती हैं, जब पर्दे पर इस गीत को हम देखते हैं तो भाई जो हमने आपसे सवाल किया था वही होता है ना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि अधिकतर ये देखा जाता है कि हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो ये जवाब मिलता है कि ठीक है या बढ़िया है। ऐसे ही हम भी कहते हैं बढ़िया है जब हमसे कोई पूछता है, जबकि जरूरी नहीं हम सबके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि भीतर तो उथल पुथल और वैचारिक तूफान सबके साथ चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आने के बाद तो हम रहे ना हम, हमारी श्रीमती जी तो कहती हैं कि 1 बजने वाला है, सब काम से फ्री हो जाओ, नहीं तो 1 घंटे तक आपके मिजाज नहीं मिलेंगे, क्या करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर हमारी आंखें भर आती हैं। बैकग्राउंड गाने में आंखें भर आई थी। फिल्म हाथी मेरे साथी में जब रामू हाथी की मृत्यु हो जाती है और बैकग्राउंड में रफी साहब का गाना बजता है, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना, मेरे यार, तो आंखें भर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक सीन है वो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चल रही सजनी अब क्या सोचे, ये गाना सुनते सुनते तो आंखें बहने लगती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज एक गाना है बिन फेरे हम तेरे का टाइटल गीत, जो कि किशोर कुमार ने गाया है, बड़े ही भावुक अंदाज में गाया है। कभी कभी तो इस गीत को गुनगुनाने में मैं बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। और एक ऐसा ही गीत फिल्म भीगी पलकें का है जिसे अक्सर किशोरदा ने गाया। उस गाने को अक्सर जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि मेरी आंखें भर आई हैं। गीत है जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनकर भी हमारी आंखें भीग रही हैं, क्या करें जी। तो हमारे सवाल का जवाब आप दे रहे हैं और हम शामिल कर रहे हैं आपके जवाब। अगला गीत है जगजीत कौर की आवाज में फिल्म बाजार से, मिर्जा शौक की ये रचना है और खय्याम साहब का संगीत है। याद कीजिए सुप्रिया पाठक को, साथ में है फारूक शेख। क्या हालत है दोनों की, बिना कुछ कहे जैसे सब कुछ कह जाते हैं इस गीत के माध्यम से।

जगजीत कौर को आप सुन रहे थे फिल्म बाजार में। हमारे सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं हम कि आपके अंतर्मन की आवाज क्या है, और या यूं कह सकते हैं कि इस समय आपके भीतर क्या चल रहा है। बाहरी रूप में तो आप इस सफर में हमारे साथ चल रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपनी बात लिख रहे हैं, लेकिन आपके भीतर इस वक्त क्या समझ गए मेरी बात? और ऐसा कोई गीत जिसे आपने जब फिल्म के दौरान देखा और आपकी आंखें भर आई? बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें देखते समय हमारी आंखें भर आती हैं, लेकिन आपकी याद में जो गीत शामिल है उसका जिक्र करें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बहुत ही कम शब्दों में कि हमारे भीतर यानी मेरे भीतर बहुत शोर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने लिख दी कि वाकई भीतर एक शोर जो है, कोलाहल मच रहा होता है हमारे, लेकिन बाहर हम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यही जिंदगी का शायद फलसफा है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत यादगार होगा क्योंकि आज की थीम बहुत शानदार है। एक श्रोता लिखते हैं कि इस अंदर की खामोशी को आजकल एक नाम मिल गया है, साइलेंट डाइवोर्स, जिसमें पति पत्नी साथ रहते हैं। पति पत्नी के अलावा सभी को ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कपल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, पर अंदर की परेशानियों को, अंतर्द्वंद को ये दोनों ही अच्छे से समझ पाते हैं। और हिंदुस्तान में तो खास तौर से ऐसे कई जोड़े आपको मिल जाएंगे जो अलग भी नहीं रह पा रहे और साथ भी नहीं रह पा रहे। बहुत बड़ी समस्या की ओर आपने इशारा किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि गदर एक प्रेम कथा फिल्म में जब अभिनेत्री को गोली लग जाती है तो बच्चा अपनी माँ के लिए रोते हुए गीत गाता है, घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदगी, वो पल बहुत भावुक था मेरे लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये द्वंद्व हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार हमें सोचने, सीखने और सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हम अपने मूल्यों को समझते हैं, धैर्य रखते हैं और स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करते हैं तो ये द्वंद्व धीरे धीरे स्पष्टता में बदल

जाता है। बहुत सुंदर। बाकी आपने और भी बहुत कुछ लिखा है कि अंतर्मन में द्वंद्व तब होता है जब हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कर्तव्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक ओर स्वार्थ होता है और दूसरी ओर नैतिकता और जिम्मेदारी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा अलग हटके काफी रोचक विषय चुना गया है, जिसमें सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत बजता है और अंत तक बजता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बर्मनदा की गाय ज्यादातर गीत अंतर्मन की आवाज होते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। बहुत सारे ऐसे गीत हैं एसडी बर्मन साहब के जो अंतर्मन की आवाज है, और उन्हें पर्दे पर देखकर या जिंदगी में गुनगुनाते हुए जब हम उन्हें गुनगुनाते हैं तब भी हमारा मन भर जाता है। आइए सुनते हैं ऐसा ही गीत। सचिन देव बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन की ही आवाज यानी बर्मन दादा की आवाज। फिल्म का नाम आराधना। जी हाँ, फिल्म का नाम आराधना।

अगर आप बता सके तो बताइए, फिर पर्दे पर इसमें इस गीत में शर्मिला टैगोर है, उनके साथ पिता के रूप में कौन से कलाकार हैं? इस फिल्म में उस किरदार का नाम है गोपाल त्रिपाठी, उनका असली नाम क्या है बताइएगा?

सचिन देव बर्मन की आवाज थी, फिल्म का नाम था आराधना। हमने आपसे पूछा था कि शर्मिला टैगोर के साथ उनके पिता के रोल में, जिनका नाम फिल्म में गोपाल त्रिपाठी है, कौन से कलाकार हैं। हम आपको ये भी बता दें, ये कलाकार गीतकार और संगीतकार भी हैं। हमारे श्रोता का कहना है कि फ्लैशबैक गीतों की अगर बात करें तो संगीतकार गायक सचिन देव बर्मन जी ही एक ऐसे गायक हैं जिनके गीतों को सबसे ज्यादा फ्लैशबैक में फिल्माया गया है। शायद ही कोई गीत हो जो सचिन दा की आवाज में किसी अभिनेता पर फिल्माया गया हो जिसमें अभिनेता ने अपने होठ हिलाए हो। वैसे मैंने अलग गीतों की लिस्ट पोस्ट कर दी है, देखते हैं मेरी लिस्ट में कितने गीत बजते हैं। बिल्कुल, आज तो हमारी पसंद के गीत जो बज रहे हैं, यानी हमने जो गीत चुने हैं आपकी लिस्ट में, वो लगभग गीत शामिल हैं। और इसके लिए तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आप सभी को ढेरों बधाइयां दे भी दी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म के पात्र को समझना, उस पात्र के मन में क्या चल रहा है, इस बात को पर्दे पर व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि निर्देशक के हाथों में सारे पात्रों के धागे होते हैं, इसलिए कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से कलाकारों से गाने ना गवाकर पार्श्व में गाना चलाते हैं। ये काम निर्देशक के लिए और संगीतकार के लिए मुश्किल होता है। पात्र के अंतर्द्वंद को कलाकार अपने अभिनय से पर्दे पर साकार करता है, लेकिन वो किस तरह साकार करे निर्देशक को सोचना होता है। सभी की मेहनत और सोच का परिणाम होता है ऐसा गाना जो आज भी दर्शकों को याद आता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म निकाह में सलमा आगा और उनके पति के साथ जब हनीमून पर जाती हैं, लेकिन उनके पति बिजनेस के काम में उलझ जाते हैं और अपने पति को समय नहीं दे पाते, तब सलमा आगा अकेली पड़ जाती है और ये गाना बजता है, समा भी है जमा जमा, ये गाना। और मतलब ये सिचुएशन आपको पसंद आई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका लिखना है कि आंधी की भावपूर्ण गाने से सफर के विषय वस्तु की संवेदना अनुरूप जबरदस्त आगाज, और ये फिल्म भी अंतर्द्वंद से भरी हुई फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा, आंधी फिल्म तो बहुत ही कालजयी फिल्म है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बढ़िया थीम है आज की। आप सभी उद्घोषकों की खासियत ये है कि आप कार्यक्रम में विविधता बनाए रखते हैं जिससे कार्यक्रम सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जाए जब बैकग्राउंड में ये बजता है तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं। बेहद मार्मिक गीत है, दर्द भरी रफी साहब की आवाज भी दिल को छू जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक गीत है वो। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का गीत मेरे साजन है, उस पर जब भी सुनती हूँ या देखती हूँ तो मेरी आंसू नहीं रुक पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत भी बहुत दर्द को समेटे हुए है। तो हमारे सवालों का जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दीजिए कि इस वक्त आपके भीतर क्या तूफान चल रहा है। कार्यक्रम तो आप हमारे साथ सुन ही रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं सफर में, लेकिन भीतर क्या चल रहा है एक एक पंक्ति में बताइए ना। तो चलिए, बंदिनी फिल्म का ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत थोड़ा सा हमने बदल दिया है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत।

हमारे सवाल के जवाब में श्रोता जवाब दे रहे हैं सवाल का कि आपके भीतर क्या चल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि दीदी मैं तो सुबह ध्यान करता हूँ इसलिए मन शांत रहता है, इसलिए तूफान की कोई संभावना नहीं होती। बहुत शानदार। वहीं लिखते हैं एक श्रोता कि कार्यक्रम सुनते हुए मन में चल रहा है कि आज छुट्टी का दिन है और कौन कौन से जरूरी काम है जिन्हें निपटाना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या क्या बताएं आपको कि क्या तूफान चल रहा है भीतर। एक श्रोता ने लिखा है कि मन के भीतर ये द्वंद्व चल रहा है कि कैसे इतने अच्छे सवालों का जवाब दे, क्या खूब। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने सही जवाब दिया है कि जो गीत हमने आपको सुनवाया था सफल होगी तेरी आराधना में, कलाकार थे पहाड़ी सान्याल। बिल्कुल सही कहा आपने, पहाड़ी सान्याल थे और जो गोपाल त्रिपाठी की भूमिका में होते हैं। और पहाड़ी सान्याल एक गीतकार और संगीतकार भी हैं और सबसे बड़ी बात कि इनके पिता भी नागेंद्रनाथ सान्याल भी बहुत बड़े कलाकार थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो मैं लोगों को ऊपरी तौर पर बड़ा ही शांत नजर आता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मन में जो विचार आते हैं, जो उथल पुथल मची रहती है, उसके बारे में मैं ही जानता हूं। ये सिलसिला जारी ही रहता है। इनसे उबरने के लिए मैं या तो डायरी लिखने बैठ जाता हूं या लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता हूं या फिर किसी शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर लेता हूं। बिल्कुल यही तरीका है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी भी चैन नहीं आता जीवन में। अरे मन को समझाइए, बहुत जरूरी है मन को समझाना। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन मंदाकिनी जी बहुत ही अच्छा है, आवाज मीठी है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। हम भी आप सभी को सैल्यूट करते हैं कि आप इस सफर में अंत तक बने रहते हैं और हमारी जमकर तारीफ करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं बिल्कुल सही जवाब दिया आपने पहाड़ी सान्याल, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, वो शर्मिला टैगोर के पिता बने फिल्म आराधना में। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मदर इंडिया में जब नरगिस कीचड़ में पड़े चने अपने बच्चों को खिलाती है तब रोना आ जाता है। बहुत बहुत क्या कहूँ मैं, ऐसा सीन है वो वाकई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का ये गाना वो जाने वाले तो ऐसा गाना है जिसे भुलाना मुश्किल है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप भी कभी विविध भारती का कोई प्रोग्राम जब प्रस्तुत करती हैं तो अगर उस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं भी होती है तो भी आप हमें बिल्कुल महसूस नहीं होने देती हैं।

श्रोताओं का मनोरंजन करती रहती हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म वीर जारा में गाना चलता है दिल में मगर चाहत के दिए, बहुत ही भावुक गाना है, तब हम भावुक हो जाते हैं। और एक श्रोता ने कहा है कि अंतर्मन की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है, इसलिए शायद इंसान कभी कभी खुश होता है और दुखी भी रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन दा का जो आलाप है वो हमें भावुक कर देता है, बिल्कुल उनकी आवाज़ तो जैसे कोई ईश्वरीय आवाज़ है ऐसा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मन में जो हलचल है उसे कैसे व्यक्त करूं, आज हंसी का मुखौटा ही सही, बस विविध भारती के कार्यक्रम को सुनना है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन देव बर्मन के स्वर सबसे अनोखे और उनके गाए गीत बहुत विलक्षण लगते हैं और इतनी अच्छी लगती है उनकी आवाज़, मैं बता नहीं सकता, उनके गाने सुनकर मैं न जाने किस दुनिया में खो जाता हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप हमें भावुक करने में सफल हो गई हैं। सच में भावुक हो गए आप? अरे जिंदगी में भावुकता भी ज़रूरी है, हाँ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, भावुकता भी बहुत हद तक सही है, लेकिन भावुक होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना ही नुकसान कर लें। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म खानदान में नूतन और सुनील दत्त में जब घरेलू झगड़ों में घर का बंटवारा होता है और दीवार खड़ी हो जाती है और बैकग्राउंड में गीत बजता है वो देखो जला कर किसी का, ये फिल्म अनपढ़ का गाना है, तो ये बहुत गीत मार्मिक लगता है, गीत ही अपने आप में इतना गंभीर है कि इसे सुनकर ही जो है मन में तूफान उठ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्वदेश फिल्म का गीत ये जो देश है तेरा भी आंखें भिगो देता है, बहुत सुंदर। और कई श्रोता लिखते हैं कि मेरे चयनित गीतों से एक और गीत सफल होगी तेरी आराधना भी कार्यक्रम में शामिल करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपका कि आपने पैनी नजर रखी आज हमारी जो हमने जो टेक्स्ट दिया था उस पर और गीत ढूंढने में आप सभी सफल हो गए। चलिए एक ऐसा ही और गीत सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आपकी कसम, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत।

हमारी श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के अनेक रूप हैं, मगर पीड़ा का केवल एक ही रूप है। वो पीड़ा हमारे चेहरे पर दिख न जाए सो हमें अनेक मुखौटे समय समय पर लगाने पड़ते हैं और हमें ठहरना नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। सुख हो या दुख, हम एकदम से तिलमिला उठते हैं। कोई कैसे जान सकता है कि हमारे जीवन की बेचैनियां तो तब भी सांसें भारी लगे, थोड़ा मन को आराम दे बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के, क्योंकि भावुक हर भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कुछ भावों को संभाल कर हमें रखना होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बहुत आभार, आपने बिल्कुल सच कहा कि भावुक होना चाहिए पर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार होठ कुछ नहीं कहते पर अंतर्मन की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है, जिस आपकी आवाज में का प्रवाह गंगा नदी के समान है, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते, बहुत शानदार गीत है, जिंदगी की हकीकत को बयान करता ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अंतर में बस यही चल रहा है कि अपनी बेटी की विदाई कैसे करूंगी। और एक श्रोता लिखते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर मन के हालात अगर सही नहीं है तो दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये खतरा होता है। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि अभी बहुत से गीत रह गए हैं, ये थीम दोबारा लाएं मंदाकिनी जी, अभी मन नहीं भरा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत कानों से नहीं अंतर्मन से सुने जाते हैं, इसलिए वो बरसों बरसों जो है याद रहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम दिल को छू रहा है, आंखें भीगती जा रही हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, बेहद खूबसूरत है आज का ये कार्यक्रम। जी, तो कहा ना किशोर कुमार ने कि जो है वक्त रुकता नहीं है और ठहरता नहीं है, बदलता रहता है और

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और एयरोस्पेस क्षेत्र को तेजी मिल रही है, रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्ध पोतों, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार यह आयोजन दुनिया भर में 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया और सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जन भागीदारी की शक्ति से देश मजबूत होगा और सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत महज 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिल रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि नए अवतार के रूप में यह भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यों को इससे गति मिलेगी। पंचायती राज विभाग की ओर से प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न पंचायतों में पंचायत विकास शिविर का आज आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इनमें से कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निदान किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस समय दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है। विभिन्न जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। वहीं रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज भी कई परीक्षा विशेष ट्रेनें चला रहा है। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने राजधानी पटना और आसपास के

क्षेत्रों में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 तैयारा की पहली परवाज के साथ ही भारत ने हवाबाजी के शोबे में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में ऐसे 40 मजीद तैयारे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे छोटी और दरमियाना सनअत और एयरोस्पेस के शोबे में तेज़ी आ रही है, रोज़गार के नए मौके पैदा हो रहे हैं और ख़ुद कफील भारत का अज़्म मजबूत हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 जंगी बेड़ों दुनागिरी संशोधक और ग्रे शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आसमान तक लगातार ज़्यादा महफूज और ख़ुद कफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल अक़वामी यौम योग का तज़किरा करते हुए कहा कि इस बार ये इनेकाद पूरी दुनिया में 2500 से ज़्यादा मुकामात पर हुए। भारत में यौम योग में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जनाब मोदी ने कहा कि मग़रबी एशिया में जंग की सूरत हाल के पेश नज़र उनकी अपील पर कुछ जगहों पर मुल्क के आवाम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया और सोना की खरीदारी और बैरून मुल्क सफ़र को कुछ वक्त के लिए टाल दिया। जनाब मोदी ने खुशी का इजहार किया कि भारत के लोग इस आलमी बहरान का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। जनाब मोदी ने इतमाद जाहिर किया कि अवामी हिस्सेदारी की इस क़ुव्वत से मुल्क मजबूत होगा और कामयाबी मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क करोड़ों ख़ानदानों को हादसा बीमा का फ़ायदा दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत महज 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का हादसा बीमा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत मौत की सूरत में नज़दीकी अहले खाना को 2 लाख रुपये तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपये का प्रीमियम देना होता है। जनाब मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो इन स्कीमों के बारे में अपने ख़ानदान वालों के साथ चर्चा करें। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने नालंदा यूनिवर्सिटी का तज़किरा करते हुए कहा कि नई शक्ल में यह यूनिवर्सिटी भारत की तकदीर लिख रही है। जनाब मोदी ने 2 साल कबल नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का इजरा किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में शास्त्रों की कदीम रिवायत को फिर से जिंदा किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दी और दूसरी यूनिवर्सिटियों से भी ऐसी पहल पर गौर करने की अपील की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली का मसला आज एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने मुल्क के आवाम से माहौलियात के तहफ़ुज़ की सिमत में लगातार कोशिश करते रहने की अपील की। आखिर में वज़ीर आज़म ने पानी के तहफ़ुज़ के सिलसिले में कहा कि बारिश का पानी एक एक बूंद बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन मुहिम में ज़रा भी सुस्ती नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर ब्लॉक में टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि हर महीने पंचायत की सतह पर इस दिन के इनेकाद से पंचायतों की हमारे तरक्की का रास्ता हमवार होगा। उन्होंने कहा कि दही तरक्की के कामों को इससे रफ्तार मिलेगी। महकमा पंचायती राज की जानिब से हर महीने के आखिरी एतवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का इनेकाद किया जाएगा। हमारे नुमाइंदों ने बताया है कि मुख्तलिफ पंचायतों में पंचायत विकास शिविर का इनेकाद किया गया। इस कैंप में बड़ी तादाद में गाँव वालों ने अपने मसाइल से अफसरान को वाकिफ कराया और उनके मसाइल हल हुए। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान आज रियासत के मुख्तलिफ इम्तहान मराकज़ पर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के सिपाही भर्ती इम्तहान का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त दूसरी नशस्त का इम्तहान चल रहा है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से बदउनवानी से पाक इम्तहान का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। वहीं रेलवे उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रियासत के बेशतर हिस्सों में जनूब मगरब मानसून की सरगर्मी से हल्की से दरमियाना बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशनगोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत रियासत के शुमाल मशरक के हिस्सों में कई मकाम पर तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के कुल 100 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में BE/BTEC उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bsnl.co.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी एक बार फिर जान लें, www.bsnl.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है।

0: इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ।

0: सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुति कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था राजकुमार, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजा मेहदी अली खान की लिखी रचना सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था आपकी परछाइयां।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है मेरे महबूब। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की लिखी गीत रचना। गायिका हैं लता मंगेशकर और ये फिल्म है बाघी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हैं राही प्यार के। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका 2 गाना अब आप सुनेंगे, स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। इस गीत को जानिसार अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है हयाम साहब ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाज मुकेश की। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रोशन का।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया?
3: राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत हम आपको मदन मोहन के संगीत निर्देशन में सुनवा रहे हैं। स्वर मोहम्मद रफी का है और फिल्म का नाम है शराबी।

0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत।

0: बन जाएगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा शेर सिंह गिन्नारे, और ये हैं तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी चंद्रैया, मल्लवा लावण्या, रेवंत, महेश्विन, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तराना का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये हैं सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और उनके परिवार वाले, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और उनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अठिया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनके परिवार वाले। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीणा देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और उनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लूराम पूरन रोहित छोटू डुंडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाही गीत।
2: मन चाहेगी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देश

0: हैं वीपी दीक्षित भट्ट। तो आइए सुनते हैं नाटक कंटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की, पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे। उनको धक्का सा लगा, आप ही के फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस धक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो। अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं, और देखो तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
2: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
1: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब। मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
2: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
1: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
2: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
3: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।

0: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
1: हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है।
0: देखो तो तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं।
2: हेलो।
1: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, बैठिए।
2: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
1: आपके नर्सिंग होम की तुलना में।
0: भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
1: सुनाओ।
0: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
0: अम्मा जी,
1: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
0: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
2: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
0: शकुंतला? कौन शकुंतला?
1: तुम जानती हो उसे उमा?
0: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार स्वामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
1: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
0: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
1: तब
0: खुद कुमार स्वामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
2: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, सब क्या इसी शादी के लिए थे?
0: जी हाँ।
1: तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
0: कैसी चिट्ठी है?
1: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है।
0: ओह,
1: शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।

0: ये क्या आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
1: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
2: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
1: कह क्या रही हैं आप?
2: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
1: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
2: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
3: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
2: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
0: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती ही हैं भैया।
2: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
3: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
2: मदद? तुम
3: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
2: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
3: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
0: हों। नहीं, ये एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
2: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है, जब तक वो रहे वहाँ मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहाँ एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
3: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
2: वहाँ एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
3: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुँच है, भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
2: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
3: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
2: अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
3: तुम तो बड़ी हट्ठी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
0: अच्छा, अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
2: अच्छा, बाय बाय।
4: मुझे तो पहले ही मालूम था।
1: क्या मालूम था तुम्हें?
4: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
1: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
4: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
1: ये भी कम हटीली नहीं है।
4: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
1: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
4: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
1: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
4: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा, मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
1: फिर
4: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
1: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
5: कंपाउंडर
6: जी, अभी आया।
5: सुनो अलाबख्श, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
4: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
5: तुमने सुना है अलाबख्श, आस पास के गाँव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
4: गाँव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
5: अच्छा अलाबख्श, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
1: जी बहुत अच्छा।
7: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
6: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट कहकर फटकार दिया।
7: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
6: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
7: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पर चल रहा है साहब।
6: गाँव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
7: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
6: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है। आज

0: कल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है।
1: इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्मार्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
2: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख हैं जी कब तक चलेगा।
0: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
2: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
1: शाबाश, ये हुई काम की बात।
0: देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
3: डॉक्टर साहब
4: क्या हुआ भाई? ये खाओ, ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
3: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
4: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
5: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
3: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
5: ओ, दवाएं क्या हुई?
3: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। ओफो, उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
5: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
4: ऐसा करो, हाँ? पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
5: अच्छा,
4: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
5: ठीक है,
3: मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
4: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे।
6: डॉक्टर साहब, एक बात है।
4: बताओ जानम्मा, क्या बात है?
6: कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा?
4: घबराने की क्या बात है, बताओ ना।
6: वो उमा जी के घर में,
5: मर्द नायकम जी के घर में क्या बात है?
6: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए।
4: कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
7: डॉक्टर साहब,
4: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं।
6: डॉक्टर साहब
4: कौन है?
6: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
4: आप कौन है? अरे जहनम्मा तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
6: डॉक्टर साहब, ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
4: क्या?
6: कुमार स्वामी के घर?
8: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
4: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
8: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
6: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
4: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
6: अब की बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
4: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
3: डॉक्टर साहब,
4: हाँ हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है?
8: उस कमरे।
4: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
3: आइए डॉक्टर साहब, घर से
4: चलिए।
8: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं? आंखें खोलो बेटा।
4: कंपाउंडर
9: जी, ये लीजिए दवा का बक्सा।
4: लो।
5: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है।
4: कोई भी दवा बेकार है।
3: डॉक्टर साहब,
5: डॉक्टर साहब,
3: नहीं नहीं नहीं।
4: कंपाउंडर
5: जी,
4: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
5: जी,
4: चाय निकले काफी देर हो चुकी है।
8: नहीं,
4: ऐसा करो, इसकी इसकी माँ को तुम

0: कुमार स्वामी साहब धीरज से काम कीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस।
1: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फेंकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
2: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
0: कंपाउंडर चुप रहो, ये बदतमीजी है।
3: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
0: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया, आप घर रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
2: चलो
0: चलो।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा, आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा,
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।
4: अरे देव भारती, तुम आ गई, मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहां से नहीं। उमा,
4: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हूँ।
5: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ, अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
4: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
1: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए, भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
1: आइए, चलिए चलिए।
4: भाई, तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती हो,
4: फिर भी
1: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है, उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है।
4: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
6: सुनिए, एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
4: क्यों, क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
6: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोग्य स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किबार तोड़ डाली और भीतर।
1: क्या? हे भगवान!

0: अरे भारती, अरे अकेली मत जाना।
1: तुम भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
0: अरे कोई है? अरे

0: कोई भी इमारत के अंदर घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है, हमें डराती है, हटा पीछे।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए लखो, चलाओ पत्थर, मारो।

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
0: सो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
2: आइए आइए आइए। डॉक्टर साहब कैसी हैं?
1: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
2: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
3: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
4: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की, आपको अकेले ही वहां जाना ठीक नहीं था।
3: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है। बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
2: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके। तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
3: चिंता की कोई बात नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मेरा काम यहीं शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
2: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
4: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं। वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
3: हाँ। डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
4: जरूर जरूर।
3: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
4: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
3: गुड बाय।

0: सोच रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हो?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: उमा,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये उमा।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है।

0: इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। यह था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व, पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे, उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे

0: हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं, अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ,
1: वो आप तो किसी भी विषय का जिक्र करें तो वो पेज खुल जाएगा।
2: करेक्ट,
1: वैसे जिसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ हाँ, वैसे वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं।
1: yes.
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
1: एक व्यापक दृष्टिकोण,
2: व्यापक दृष्टिकोण है ऑफ कोर्स, और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूं और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूं। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी, जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे,
1: बिल्कुल,
2: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे, तो इट

अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ऐसा मैं कहूंगी. जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मैच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था. और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का.

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारतीय खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है का जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी। वो
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते हैं तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है, मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं वहां पर प्रीमियर है, तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा अच्छा कितना रोल है तुम्हारा। मेरा कुछ है 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो, ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन,

0: रहता कहाँ है, क्या करता है, बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का. तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से. और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ, वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ. अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे फौज के जो मालिक थे, उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन. और
1: गजब।
0: जब इस तरह से देखा, तब दादाजी ने कहा ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है.
1: अरे
0: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये.
1: जी
0: हम लोग बंबई आए, और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी।
0: एक 1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी. तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है उस वक्त. तो हम लोग उतरे, और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है.
1: वाह वाह
0: फिर
1: वाह
0: एक
1: वाह।
0: सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे इस तरह से था. नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में, किराए का घर जो था वहां पर तारा. पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं, रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं. और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है.
1: बिल्कुल। सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं, जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं
0: हाँ
1: और रातों
0: हाँ
1: रात बंदा स्टार बन
0: स्टार
1: जाता
0: बन
1: है
0: जाता है, करेक्ट
1: और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और
0: राइट.
1: यहां अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या
0: क्या
1: धमाका हो
0: हुआ
1: चुका है।
0: है, करेक्ट.
1: वाह।
0: उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे, तो वहां पर कस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहां पर ये रहते हैं. अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था, तो उनका फोन बजता था. हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली. इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो.
1: इतने
0: उस
1: फोन आ रहे हैं
0: इतने फोन आने लगे,
1: तुम्हारे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6 6 7 7 महीना 1 1 साल फोन आने में लग जाता था. पर
1: जी
0: बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था, इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था. मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर. और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था, और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था. और मुझे याद है 1 हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में
0: एक्चुअली.
1: करता
0: तो 1 हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8 10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था.
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं, और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था. मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे. जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है, कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी. उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है. पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा. हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था. कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूं, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वो बिल्कुल कलाकार थे, और

0: एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया। इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है, वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: अरे सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार, तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपरहिट था, और ये मैं बात कर रही हूं 91-92 की,
1: जब वो
0: सड़क
1: बहुत बड़े स्टार
0: बहुत
1: बन चुके
0: बड़े
1: थे।
0: स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: तब
0: थी,
1: उतनी सिस्टमेटिक इंडस्ट्री नहीं थी।
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो,
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था, और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर
1: क्या
0: हुआ
1: बात
0: करते थे।
1: है, क्या
0: ये
1: बात है!
0: 2003-04 की बात कह
1: खुद
0: रही
1: ही
0: हूं।
1: डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं
1: और को
0: नहीं
1: दिया था?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले,
1: वाह,
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं,
1: जी
0: उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है, ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक
0: हाँ
1: उनका बस
0: हाँ हाँ
1: था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वॉज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे, उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको।
0: बहुत मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी,
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ वो बड़ी
1: समझदार
0: थी,
1: थी।
0: समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी।

0: इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे. तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है.
1: बिल्कुल
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है. और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया. तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी, वैसे देते थे. क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली. लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा. ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था. और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे, तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे. तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था? बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना, वो मम्मी बनाती थी.
1: अच्छा, तो उससे अंदर
0: तो उससे अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले.
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है.
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था. मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ. पापा तो बाहर का होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग. हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे. पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स. कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस. और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था. तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख, जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली. तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए. और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूँगा. और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे अच्छा, ये फिल्में देखनी है.
1: वा,
0: और
1: वा,
0: वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर.
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी.
1: ओके.
0: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे. तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे. उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वा,
0: में
1: वा।
0: जहां भर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था. तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है, उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है.
1: वाह.
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं, उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स. तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना. तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी. तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था. और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसठ है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे. तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग

0: ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को, और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गए, डॉक्टर अनिल अवचट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे
1: बाबा
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे, तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं बिल्कुल
1: वाह
0: बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी, टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे, और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह
0: मैं इनके
1: वाह
0: साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा सबको खिलाते थे। और
1: हाँ
0: मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा नहीं, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बे में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई होता था।
0: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता
1: क्या बात
0: था
1: है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहां बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा
0: हाँ
1: जल्दी आ जाना सात समुंदर
0: हाँ
1: पार से,
0: श्योर
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निरो फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निरो फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था।
0: नाटक करके, जो
1: नाटक
0: जिसका
1: करके
0: जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
0: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10

0: गुना और
1: दस
0: ज्यादा
1: ज्यादा
0: होगी।
1: ही ज्यादा
0: जी
1: ही। तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से। और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ। और उन्होंने, क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब
0: आगे
1: तक।
0: चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
1: हाँ हाँ डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं। और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए। और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स डॉक्टर लागू, निणु फुले, पापा, तनुजा,
0: कमर्शियल
1: रोहिणी
0: सिनेमा
1: हट्टंगडी,
0: की इतनी
1: कमर्शियल,
0: बड़ी
1: एग्जैक्टली
0: एक्ट्रेस।
1: हाँ, ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका। और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे,
0: वाह
1: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए, वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था। और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
0: ये कितना बड़ा मुहिम,
1: बहुत
0: मतलब
1: ही
0: ये अद्भुत
1: बहुत
0: काम
1: ही।
0: रहा उस जमाने के
1: तो
0: हिसाब से।
1: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूं, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है। और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस
0: वाह
1: तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की। इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड। और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया। तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं। तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर, अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था। और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था, वो बॉम्बे में पापा ने पढ़ा। और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे। तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया,
0: गजब।
1: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था तो बात कैसे हो। तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे। तो पापा ने कहा ठीक है, उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए,
0: क्या बात है।
1: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी। उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा
0: बाप
1: किया
0: रे
1: गया
0: बाप।
1: फॉर द म्यूजियम।
0: म्यूजियम
1: और ये बहुत बड़ी बात है, और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग

0: भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं, और हमेशा मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात यह लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए। इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात।
1: वाह वाह।
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी, और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी। जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग, और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में मैं
1: बिल्कुल। चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: वो बताएं।
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं? मैंने कहा क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है? ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट? सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो। मम्मी का अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ।
1: लो।
0: तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी। तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में। दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था, इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज हम बम्बई है, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था, तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहाँ पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त, और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है, बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे। वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली? तो पापा ने कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहां पर। तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था, और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है। तो उस वक्त

0: सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा, वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का। उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है, पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया, देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था। वो किस्सा इस तरह से कुछ हुआ
1: और
0: था।
1: किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहां नजर आता है।
0: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी, पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे। इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना, नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको
0: ये
1: पता
0: उन्होंने
1: था
0: बहुत करीब से देखी हुई थी। तो
1: बिल्कुल।
0: इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था अंदर से।
1: बिल्कुल। यहां एक गाना सुनते हैं,
0: श्योर।
1: दो आंखें 12 हाथ का, ए
0: हाँ,
1: मालिक तेरे बंदे
0: ऑफ
1: हम।
0: कोर्स।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत।

0: और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दृष्टिकोण में सेशल्स का एक विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडिया विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी

0: कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्माइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण

0: for honoring me with the guardian of the blue horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्माइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज जलडब्रू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच दो T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को पहले मैच में भारत को आयरलैंड से 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

संध्या 6 बजे आप लोकगीत सुनते हैं और लोकगीत आप रात्रि 9 बजे भी सुनेंगे। लोकधारा कार्यक्रम में 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण सुनना नहीं भूलिएगा।

जी हाँ, हर रोज़ की तरह आज भी हम शुरुआत करेंगे भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदन से। 5:10 पर आप सुनेंगे और 5:30 पर सुनिएगा हमारा साप्ताहिक प्रसारण विज्ञान एवं पर्यावरण।

हमारे ग्रामीण श्रोता अपना प्रसारण सुनेंगे गांव घर 6:10 पर। और आज के इस कार्यक्रम में आप मुख्य रूप से भूपेंद्र नारायण सिंह की वार्ता सुनेंगे, ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता, अलावा इसके बालेश्वर प्रसाद और साथियों से लोकगीत भी सुनिएगा, तथा साथ ही चर्चा होगी बरसात से पहले नाले की सफाई से संबंध में।

संध्या 7 बजे प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आप सुनेंगे ममता का आंचल और 7:15 पर सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम सुनिएगा। गुड इवनिंग रोहतास।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 7:30 पर और जिले की हलचल 7:45 पर। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइएगा संध्या 6:40 पर सांझ गीत के तहत और 7:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम ई मन पसंद और रात्रि 10:30 पर सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आप सुनेंगे चित्रपट तराने के अंतर्गत। नौ बजकर 15 मिनट पर गजलों की महफिल सजेगी और रात्रि 10 सुनिएगा एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग। तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की आपके लिए। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हुए हैं और यह वक्त है जब आप भक्ति रचनाएं सुनते हैं। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदन।

0: नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
1: मैं राजेश कुमार रंजन ग्राम पंचायत श्रीमा हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक

0: चस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है बुनकी वही गली नली है, वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे हैं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: घर सम्मानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सामान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव में पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: मरिक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद ग्राम पंचायत अमथुआ प्रखंड काको जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है वहाँ पार्क बनवाया जो है और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: मंगल भवन मंगलहारी
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: इसी के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण, लेकिन सबसे पहले आइए सुन लेते हैं कुछ संदेश।

जून माह का अंतिम रविवार भी विज्ञान के दृष्टिकोण से यह तारीख कई महान खोजों, वैज्ञानिकों के जन्म और उपलब्धियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इस संदर्भ में हम आपको बताते चले कि 28 जून को ही महान वैज्ञानिक गुलिमो मार्कोनी ने रेडियो के लिए अपना पहला पेटेंट प्राप्त किया, जिसने आधुनिक वायरलेस संचार की नींव रखी। 1896 में ही मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। इतना ही नहीं, आज के ही दिन यानी 29 जून को ही जर्मन रसायनज्ञ एमिल रिचर्ड एयरलेन मेयर ने प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले प्रसिद्ध कोनिकल फ्लास्क का प्रदर्शन किया। यह रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कांच का बर्तन है। अब यदि अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करने वाले ओजोन परत की बात की जाए, तो आज ही के दिन 1974 में ओजोन परत पर ऐतिहासिक शोध संपन्न हुआ। रसायनज्ञ मारियो मोलिना एवं शेरवुड रोलैंड ने अपना शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें बताया गया है कि कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC समताप मंडल की ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1995 को नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार विज्ञान की दृष्टिकोण से आज ही की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग की अनुमानों के अनुसार आज 28 जून से पूरे प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य भर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में पटना समेत दक्षिण बिहार में बादलों के डेरे रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, तथा उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तेज बारिश की भी आसार है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से बिहार के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। विशेष रूप से दक्षिण मध्य और पूर्वी बिहार के जिलों में तेज गर्जन, बिजली चमकने और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार के अधिकांश में मानसून पहुंच चुका है, तथा अगले दिनों में मानसूनी प्रणाली के और भी मजबूत होने की संभावना है। इसके बाद राज्य के अधिकतर जिलों में व्यापक वर्षा का दौर शुरू हो जाएगा। श्रोताओं, आज के इस अंक में चर्चाओं के मुख्य बिंदु होंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, हेलेन केलर दिवस तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। लेकिन शुरुआत करते हैं इस संघ के वैज्ञानिकों की चर्चा से। इस अंक के वैज्ञानिक हैं प्रशांत चंद्र महाल नोबिस एवं CNR राव। 29 जून 1893 को कोलकाता में जन्मे प्रशांत चंद्र महाल नोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे नव गठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बने, तथा औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना का पूरा खाका सींचा। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। इसके सम्मान में भारत सरकार इनके जन्मदिन को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। 1968 में इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 28 जून 1972 को PC महाल नोबिस ने कलकत्ते में अंतिम सांस ली। श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं इस संघ के दूसरे वैज्ञानिक CNR राव के संबंध में। 30 जून 1934 को जन्मे CN राव यानी चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव एक भारतीय रसायनज्ञ हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से ठोस अवस्था और संरचनात्मक रसायन

0: विज्ञान में काम किया है। राव साहब ने लगभग 1800 शोध प्रकाशित किया है और 58 पुस्तकें लिखी हैं तथा उन्हें दुनिया भर के 86 विश्वविद्यालयों से मानद डायरेक्टर की उपलब्धियां मिली हैं। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। सीबी रमन और एबीजे अब्दुल कलाम के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं। तो श्रोताओं, यह थी संघ के वैज्ञानिकों की संक्षिप्त चर्चा और अब एक नज़र विज्ञान से जुड़ी नवीनतम खबरों पर। श्रोताओं, इस सप्ताह विज्ञान जगत में कई रोमांचक खोजें हुई हैं, जिनमें आंत के बैक्टीरिया और मल्टीपल स्केल रोसिस का संबंध, प्राचीन जीवाश्मों की खोज और पुरानी बीमारियों के टीकों के नए लाभ शामिल हैं। इस संबंध में चिकित्सा शोध में सामने आया है कि बुजुर्गों में लगने वाले दाद का टीका डिमेंशिया के खतरे को 24% तक कम कर सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि हमारी आंत किस प्रकार मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों को ट्रिगर कर सकती है, जिससे इसके इलाज में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इसी प्रकार एक अन्य खबर में शोधकर्ताओं ने साइबेरिया के प्रागैतिहासिक अवशेषों में प्लेग के सबसे लगभग 5500 वर्ष पुराने प्रकोप के प्रमाण खोजे हैं, जो इस बीमारी के इतिहास को समझने के लिए नए साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो श्रोताओं, यह थी विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरें और अब बात कर लेते हैं 23 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है युवाओं के बीच खेलों और शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। इस वर्ष इस दिवस का थीम था खेल पुलों का निर्माण, बाधाओं का टूटना। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीयता, भाषा और अन्य बाधाओं से ऊपर उठकर खेल के माध्यम से सभी को एकजुट करना। ज्ञात हो कि 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में पहला ओलंपिक दिवस 1948 में मनाया गया। श्रोताओं, कल हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मना रहे होंगे। यह दिन भारत में सांख्यिकी के जनक माने जाने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष के इस दिवस का थीम है प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में आंकड़ों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। कल यानी 29 जून को महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
1: इस आयोजन को और भी जीवंत बनाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की पूर्व संध्या पर आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र कुमार, उप निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना और विकास विभाग बिहार पटना।
2: 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस देश के सभी नागरिकों में सांख्यिकी की महत्ता एवं सांख्यिकी में रुचि डेवलप करने के लिए प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोबी सर के जन्मदिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोबी सर के प्रयास से सरकार द्वारा 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की गई। उनके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे स्थापित किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO को स्थापित करने में महालोबी सर की भूमिका अद्वितीय रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का महालोबी मॉडल सर्वविदित है, जिसके आधार पर भारत में भारी उद्योग एवं कल कारखानों को स्थापित किया गया। सर द्वारा विकसित की गई महालोबी दूरी एवं रैंडम टेबल आज AI के ज़माने में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। डेटा के आधार पर हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसके

0: दस अवस्था स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फलस्वरूप नीति निर्माण कर समाधान निकाला जा सकता है, इसलिए सांख्यिकी का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना द्वारा सांख्यिकी के क्षेत्र में डेटा हार्मोनाइजेशन, डेटा यूनिफॉर्मेशन, डेटा इंटीग्रेशन के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया जा रहा है। लगभग 43-44 विभागों का डेटा निदेशालय के पास है। विभाग द्वारा स्ट्रेटेजी रूम, डेटा लैब एवं कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। बिहार के किसी भी विभाग की डेटा आधारित जानकारी इस डेटा लैब के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। कंट्रोल रूम से एक साथ लगभग 43-44 सभी विभागों के अधिकारी, जिलों एवं प्रमंडलों के अधिकारी एक ही प्लेटफार्म पर किसी समस्या पर विमर्श कर समाधान निकाल सकते हैं। जैसा कि इस बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का थीम है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, इसमें डेटा को अनलॉक करने की बात कही गई है जो डेटा हार्मोनाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है। ई स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से कुछ ही दिनों में भाव्या, DBT, मेधासॉफ्ट, जीविका, लेबर जैसे अनेकों पोर्टल के डेटा इंटर डिपार्टमेंटल यूज हेतु विकसित किए जाएंगे। आमजन एवं डेटा से जुड़े सभी पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि आमजन डेटा देने में अर्थात इन्फॉर्मेशन देने में अपना कर्तव्य समझकर सही इन्फॉर्मेशन दें एवं सरकारी कर्मी अपना कर्तव्य समझकर डेटा कलेक्शन से लेकर एनालिसिस एवं निष्कर्ष तक सजग होकर कार्य करें ताकि डेटा ससमय वैध एवं विश्वसनीय हो। आपकी हमारी एक गलती किसी क्षेत्र विशेष के एक गरीब को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजी रोटी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर सकती है। अतः हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन करें। आइए हम सब मिलकर सांख्यिकी के माध्यम से विकसित भारत 2047 एवं विकसित बिहार 2047 के संकल्पों को पूर्ण करें। जय हिंद, जय बिहार।
1: श्रोताओं, 27 जून को हेलेन केलर दिवस मनाया गया। यह दिवस महान अमेरिकी लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और विकलांगता अधिकारों की पैरोकार हेलेन केलर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बचपन से ही दृष्टिहीन और बधिर होने के बावजूद उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। वह स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली दुनिया की पहली बधिर दृष्टि बधिर व्यक्ति थी। भारत सरकार का दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग PEPWD भी इस दिन को विशेष रूप से दिव्यांग जनों को प्रेरित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, 21 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। योग हमारे देश की पुरातन प्रणाली है जो जीवन और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास को लेकर आम जन में काफ़ी सजगता देखी जा रही है। नित्य प्रति योगासन करने से शरीर रोग मुक्त बना रहता है। विविध योगासनों को अपनाकर हम जीवन को और भी खुशनुमा बना सकते हैं। योगाभ्यास के विशेषज्ञों की मदद लेकर आप भी अपनी काया को रोग मुक्त और जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं योग प्रशिक्षक प्रभाकर तिवारी जी। प्रभाकर तिवारी जी, सबसे पहले हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि योग क्या है और आम आदमी के लिए यह क्यों जरूरी है।
2: जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था कि योग का अर्थ जोड़ से है
1: जी,
2: हमें पढ़ाया जाता था, ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जाता था कि दो और दो का योग लिखें या फिर बताएं, चार चार और चार का योग बताएं। तो योग का अर्थ है हमारी स्तर का, हमारे शक्ति केंद्र का, किसी विशेष स्तर का और एक उत्कृष्ट शक्ति केंद्र से जुड़ना
1: जी।
2: कई लोग कहते हैं ऐसा कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ना या फिर हमारी शक्ति केंद्र का उच्च शक्ति केंद्र से जुड़ना, ये बहुत बड़ी आध्यात्मिकता की बात हो गई। लेकिन जो सबसे पहले शुरू

0: करने वाले हैं, जो बिगिनर्स हैं,
1: जी
0: जो योग में अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए योग का अर्थ यही होगा कि आपकी जो स्थिति है, जो शक्ति केंद्र है, उसका एक विशेष उच्चतर शक्ति केंद्र से जुड़ना।
1: जी जी
0: और यह आम आदमी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आम आदमी इलाज के लिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकता।
1: जी
0: और योग हमारी ऋषि, संत, तपस्वी, मुनियों द्वारा दिया हुआ वो शाश्वत विरासत है जिसके अभ्यास से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा, सुरक्षा के साथ साथ आजीवन इसको निरोग रख सकते हैं। जब योग का निर्माण हुआ, संत ऋषियों ने हमारे लिए योग को देने की बात की या फिर सोची उन्होंने, तो दो सोच से योग बना। एक तो योग से जो स्वस्थ हैं उनको हम बीमारियों से बचा लें, यानी उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, और
1: जी
0: दूसरा जो बीमार हो गए हैं उनको हम योग के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे नियंत्रित करके उनको निरोग करें, रोग मुक्त करें।
1: जी प्रभाकर तिवारी जी, जब भी योगाभ्यास की बात आती है तब
0: जी
1: प्राणायाम की भी बात आती है।
0: जी जी
1: आखिर प्राणायाम क्या है, प्राणायाम की अवस्थाएं और इसके चरणों के बारे में कृपया विस्तार से बताएं।
0: बिल्कुल सही आपने पूछा कि जब भी हम योग की बात करते हैं या फिर कोई योग की शुरुआत करना चाहता है, योग अभ्यास शुरू करना चाहता है, उसके लिए प्राणायाम की बात होती है, इसकी चर्चा होती है। तो प्राणायाम एक बहुत अच्छी विधा है योग के पार्ट को माने, योग के भाग में, जिससे हम अपने पूरे शरीर को शोधित करते हैं
1: जी
0: और अपनी जो जीवन शक्ति है, प्राण है, उनको आयाम देके उनका वर्धन करते हैं हम पूरे शरीर में।
1: जी
0: प्राणायाम के हमारे योग शास्त्र के हिसाब से कई अवस्थाएं हैं जो आपको, जब आप प्रशिक्षण लेंगे तो योग चिकित्सक बताएंगे आपके शरीर की स्थिति को देखते हुए कि किन किन चरणों से होकर आपको आगे बढ़ना है।
1: जी
0: इसमें मैं एक श्लोक बताना चाहूंगा हमारे प्यारे श्रोतागण को। प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठतम्, मातेव पुत्राण रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिन इति। तो प्रश्नोपनिषद से यह श्लोक है जिसका अर्थ होता है, इस त्रिभुवन में जो कुछ भी है वह प्राण के वश में है, हे प्राण
1: जी
0: हमारी उसी प्रकार रक्षा करें जैसे माँ अपने पुत्रों की रक्षा करती है, और हमें श्री और प्रज्ञा दें। तो
1: जी
0: ये हमारे प्राणायाम की व्यापकता है।
1: तिवारी जी, अब
0: जी मैडम।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे कि योगाभ्यास शुरू करने के पहले किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
0: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोतागण सोच रहे होंगे कि हम शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें।
1: जी
0: तो सबसे पहले आप ये देखें कि योग शास्त्र थ्योरी से भरी पड़ी है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन यदि सीधे शब्दों में, हम सरल शब्दों में बात करें तो योगाभ्यास शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करनी चाहिए।
1: जी जी
0: हमारे खान पान, जीवन को अनुशासन में रखना चाहिए। जैसे कि महर्षि पतंजलि जी ने कहा था, उन्होंने पहला ही श्लोक पतंजलि योग सूत्र में लिखा, अथ योगानुशासनम, यानी कि आपके जीवन के हर पक्ष में अनुशासन हो, वही योग है।
1: जी
0: और इसके साथ साथ मैं, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए उन्होंने बताया था, उन्होंने पूछा कि हे मधुसूदन, योगाभ्यास, वास्तविक योगाभ्यास क्या होगा जो हमारे ही तरह सामान्य लोग हैं। तो उन्होंने एक श्लोक बताया था जिसका मैं अभी यहाँ चर्चा करना चाहूंगा हमारे श्रोतागण से।
1: जी
0: युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि योग का आपका आहार विहार युक्त हो,
1: जी
0: कर्म आपके युक्त चेष्टा से सही हो, और आपका बहुत ज्यादा इधर उधर घूमना फिरना ना हो, एक जगह रहें ताकि ऊर्जा का क्षय ना हो, और एक जगह रहकर अपनी नींद की स्थिति को बेहतर करें। इस तरह के जो फ्लो हैं, इस तरह की पद्धति को अपनाने से धीरे धीरे शरीर से हर तरह का दुखों का नाश होता है।
1: प्रभाकर तिवारी जी, आपने हमारे श्रोताओं के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हर साल

26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना और इसके दुष्प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव संख्या 42-112 पारित करके इस दिवस को अधिकार के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिन मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त एवं अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक संकल्प को दर्शाता है। हमारे देश में मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम यानी NDPS एक्ट 1985 अपने देश में किसी भी अवैध मादक पदार्थ के उत्पादन, बिक्री, भंडारण या सेवन को दंडनीय अपराध बताता है। इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए आप और हम अपने आसपास के युवाओं और समाज में नशे की लत से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान की अवश्य चर्चा करें और नशा मुक्त समाज बनाने में मदद करें।

श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। संगीत के घराने आज भी फल फूल रहे हैं। बंगाल हो या काशी, तमिलनाडु हो या उड़ीसा, संगीत की सुरलहरियाँ भारतीय फिजा को हमेशा से ही सुहासित करती रही हैं।

0: श्रोताओं, आज का हमारा यह अंक कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। तो अब इसी के साथ अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहार पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
6: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं,

0: स्कूल में चार दीवारी करवाए हैं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: धन्यवाद।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैक चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: और अब इसी के साथ ही विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीत।

0: करेक्ट।
1: तो वैसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना गिट बैग।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: और अब इसी के साथ ही विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीत।

विंध्यवासिनी देवी और सहेलियों के गाई इसी रचना के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन की कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम, ये आकाशवाणी के पटना केंद्र है और वह कुमार सुंदरम से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले बाड़न कि जून के महीना में स्वदेशी C-295 विमान के पहला उड़ान के साथे ही भारत विमानन क्षेत्र में एगो बढ़न कामयाबी हासिल कैले बा। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी कहले हैं कि यह समय देश में ऐसन 40 गो औरी विमान बनावल जा रहल बा। ऐसे सूक्ष्म, लघु आ मध्यम उद्यम क्षेत्र औरी एरो स्पेस क्षेत्र के बढ़ावा मिली, रोजगार के नया अवसर पैदा हो रहल बा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प मजबूत हो रहल बा। श्री मोदी कहले हैं कि ए महीना कोलकाता में 3 गो युद्धपोत दुनागिरी, संशोधक आ आग्रह के जलावतरण कल जाई। भारत समुन्दर से लेके आकाश तक लगातार ज्यादे सुरक्षित आ आत्मनिर्भर बनत जा रहल बा। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चर्चा करत कहले हैं कि ए बेरा ई आयोजन में दुनिया भर में 2500 से ज्यादे जगह पर भइल ह। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोग भाग लेले बाड़न। श्री मोदी कहले हैं कि पश्चिम एशिया में लड़ाई नियन माहौल के देखत वहाँ के अपील पर कुछ जगह देशवासी लोग एकजुटता देखौलस ह आ सोना के खरीद औरी विदेशी यात्रा के कुछ समय खातिर टाल देले बा। श्री मोदी खुशी जाहिर कैले हैं कि भारतीय लोग ए वैश्विक संकट के मिलजुल के मुकाबला कर रहल बा। श्री मोदी भरोसा

0: जतौले हाँ कि जनभागीदारी की यह ताकत से देश मजबूत हुई आ सफलता मिली। प्रधानमंत्री कहले हाँ कि सरकार देश के करोड़ों परिवार के दुर्घटना बीमा दे रहल भिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत खाली 20 रुपया के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपया तक के दुर्घटना बीमा मिल रहल बा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के चर्चा करत कहले हाँ कि ई विश्वविद्यालय एगो नया अवतार के रूप में ई भारत के भाग गढ़ रहल बा। श्री मोदी 2 बरस पहले नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर के उद्घाटन कैले रहले। श्री मोदी कहले हाँ कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ के पुरान परंपरा के फिर से जिंदा कैल गइल बा। ए पहल खातिर नालंदा विश्वविद्यालय के बधाई दिले हाँ आ दूसरा विश्वविद्यालय के भी ऐसन पहल पर विचार करे के निहोरा कैले हाँ। प्रधानमंत्री कहले हाँ कि जलवायु परिवर्तन के समस्या आज एगो बढ़हन चुनौती बन गइल बा। श्री मोदी देशवासी लोगन से पर्यावरण के बचावे खातिर अपील कैले हाँ। आखिर में प्रधानमंत्री पानी बचावे के बारे में कहले हाँ कि बरखा के पानी के एक एक बूंद बचावे के चाही। साथ ही कहले हाँ कि कैच द रेन अभियान में तनिको ढिलाई ना होखे के चाही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहले बाड़न कि मन की बात कार्यक्रम हर एक आदमी के भावना के आधार बन चुकल बा। नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम सुनला के बाद पत्रकार लोगन से बातचीत करत श्री नवीन कहले हाँ कि ई देश भर में अलग अलग जगह पर हो रहल सकारात्मक क्वेश्चन के सामने रखे के एगो बढ़हन मंच बा। भाजपा के बढ़हन नेता आ सांसद रविशंकर प्रसाद कहले हाँ कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम दुनिया के सबसे प्रभावी आ प्रेरणा देवे वाला कार्यक्रम बन गइल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम के शुरुआत कैले हाँ। ए मौका पर सभा के संबोधित करत श्री चौधरी कहले हाँ कि हर महीना पंचायत स्तर पर ए दिवस के आयोजन से पंचायतन के पूरा विकास के रास्ता साफ हुई। वो कहले हाँ कि ग्रामीण विकास के कामन से ऐसे गति मिली। पंचायती राज विभाग की ओरी से हर महीना के अंतिम इतवार के सब ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस के आयोजन कैल जाई। एकरा साथ ही आकाशवाणी के पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाचार भई समाप्त भई।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनने वाला सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम। श्रोता भाई बहन, आज पूरा जिला भर राज्य भर के जितना पंचायत रहल हो ओहिजा आज पंचायत विकास दिवस शुरू भइल हो। आ ई दिवस मनावे के पीछे रहे कि ग्राम पंचायत के हमनी के जन भागीदारी से सशक्त बनावल जा। पहले का होत रहे कि दो चार लोग जुट जात रहे, वार्ड पार्षद लोग निर्णय कर लेते रहे, ग्राम सभा के कोरम पूरा होत रहे। लेकिन अब सरकार कहता कि ना वैसे ना चली भाई, ग्राम पंचायत के जितना भी योजना बनी ओकरा में गांव के लोगन के भागीदारी सुनिश्चित हुई। आ एकरा खातिर 9 गो लक्ष्य रखल गइल बा। 9 गो लक्ष्य में बा कि गरीबी मुक्त,

और उन्नत आजीविका वाला पंचायत होके, हमनी के स्वस्थ पंचायत होके, बाल हितैषी पंचायत होके, जल पर्याप्त पंचायत होके, स्वच्छ और हरित पंचायत होके, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत होके, सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत होके, और सुशासन युक्त पंचायत होके, और महिला हितैषी पंचायत होके, ये सरकार के 9 गो लक्ष्य बा। और एक विशेषता जौन बा आज के जौन शिविर के, कि गांव के सभी सदस्य के भागीदारी होके, ग्राम पंचायत के योजना में आगामी जौन विकास कार्य पर जौन होई तो ओकरा पर चर्चा कल जाए, सतत विकास के लक्ष्य के चयनित करके ओकरा पर विचार विमर्श गांव के बीच होके, और उत्कृष्ट पंचायत के विकास खातिर वीडियो प्रदर्शित भी कल जाए। और आज हमनी के प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम भी रहला मन के बात, ओकर भी सीधा प्रसारण आज कार्यक्रम में सुनावल गेल ह। श्रोता भाई बहन देखें, जो 9 गो लक्ष्य बा एकरा में सोची तनी कि जौना पंचायत महिला हितैषी के हो जाए, बाल हितैषी के हो जाए, जहाँ के बच्चा भविष्य, जहाँ के बच्चन के भविष्य सुरक्षित हो जाए, महिलान खातिर कल्याणकारी योजना चले, महिला के सशक्तिकरण के वजह दिखे, सामाजिक न्याय या सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत हो जाए, और आत्मनिर्भर बुनियाद वाला हो जाए, वो पंचायत के सोची कि का ढांचा हुई, का स्वरूप हुई। और एकरे अलावा ना अतने नहीं खे, एकरा में स्वच्छ हरित पंचायत भी बनावे के बा, जहाँ गंदगी ना होके हरा भरा हमनी के पंचायत होके, जोन कि गांव के स्वरूप आदमी जब सोचेला तो लागेला कि गांव में 2-4 गो पेड़ पौधा होई, आदमी गर्मी के दिन में भी बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे खटिया निकाल के जब बतकही करत होई तो का आनंद आवत होई, ओकर कल्पना करेला। जल पर्याप्त पंचायत होके, जौना गाँव में ताल पोखर ना होके, वो गाँव कहाय की स्थिति में नहीं है तो ताल पोखर के बचावे के बा। और स्वस्थ पंचायत होके, ऐसन पंचायत होके जौन कि गरीबी मुक्त होके और आजीविका युक्त पंचायत होके, तो सरकार के तो ये लक्ष्य इतना बढ़िया बा। और जब तक हमनी के भागीदारी ना हुई, जब तक जन भागीदारी ना हुई, तो कोई भी लक्ष्य के प्राप्ति ना हो सके। ऐसे हर महीना के अंतिम रविवार के इस तरह से जौन पंचायत विकास दिवस बा मनावल जाए, तो अगर इमें नहीं जा भाग ले तो अगला बार वह सब जरूर लेवे के चाहिए। और देखिए आज के कार्यक्रम में हमनी के सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण पर बात कीजिए, ऊर्जा संरक्षण काहे जरूरी बा एकरा पर चर्चा कीजिए। आज से हमनी के 30-40 साल पहले तक गांव में भी जे बूढ़ पुरनिया रहे, जे घर के जे बड़ लोग रहत रहे, घर घर में शिक्षा मिलत रहे कि भाई जा तड़ कमरा से निकल तड़, घर के रूम में से बाहर निकल तड़ तो पंखा बंद कर द, बिजली के बल्ब उतार द, ऐसे कि ऊर्जा के बचत हुई। अनावश्यक रूप से कहीं पंखा बल्ब सब जलत कोई देख लेवे तो लागे कि भाई कतना पहले ओकरा कष्ट हो रहल बा। ऊर्जा बचावे खातिर व्यक्ति व्यक्ति के जौन आदत में शामिल कल गई रहे, जौन संस्कार में बच्चन के दिहल गई रहे, वो बहुत बड़ा कारगर साबित होत रहे कि ऊर्जा कैसे बचावल जाओ। आजो रवा देख कि जे प्रबुद्ध वर्ग बा, जे वरिष्ठ जन बा, जे हमनी के सीनियर सिटीजन बाड़न, वो कहीं भी चले लन, कहो हम गली महला में देखनी, अगर कौनो पोल पर बल्ब लागल बा, स्ट्रीट लाइट लागल बा, ओमे अगर स्विच नहीं खे तो देखे लन कि जलत आ दिनों में, तो उनका बड़ा कष्ट होला। कष्ट ऐसे होला कि ऊर्जा के संरक्षण नहीं हो पावत, चूँकि उनकर बचपन से आदत बा कि ऊर्जा हमनी के बचावल जाओ। तो ऐसे ऊर्जा बचावे खातिर हमनी के का करे के चाहिए, आज के चर्चा में हमनी के यह पर विस्तार से बत कही कल जाए। एकरा अलावा आज हमनी के बालेश्वर प्रसाद और साथी लोग के गावल लोकगीत भी सुनल जाए, जौना के बोल हुई बगिया में भंवरा। ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता विषय पर वार्ता भी सुनल जाए, वार्ताकार होखब वरिष्ठ पत्रकार और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भूपेंद्र नारायण सिंह जी। बरसात के पहले नगर निकाय और पंचायतन के का दायित्व बा, कैसे ओकरा का करे के चाहिए कि नाला के सफाई हो जा, और नाला के सफाई होके से का लाभ मिलेला, यह पर भी हम

के एक जानकारी में संक्षिप्त में चर्चा कर ली, चलत चलत मौसम के मिजाज भी जानल जाए, लेकिन शुरुआत कल जाओ ऊर्जा संरक्षण से। श्रोता भाई बहन, बिजली के जौन दूसरा नाम है, हमने के बिजली मोटर पंप इंजन गाड़ी घोड़ा जितना बा ओकरा में कहीं ना कहीं ऊर्जा के खपत होला। वो ऊर्जा के बिना ना चले, ओकरा में एनर्जी लगेला। ऊर्जा के दूगो स्वरूप हमनी के जानत जाए, एक पारंपरिक ऊर्जा हो गई और एक जौन सौर्य ऊर्जा पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा जौन आगे कहल जाला। हमनी के जौन बिजली या करंट जौन पैदा करेला वही के ऊर्जा जाने नहीं जा, जैसे कि मशीन हो गई, पंखा हो गई, बिजली हो गई, मोटर पंप हो गई, कारखाना हो गई, जितना भी जा चीज बा, और ओकरा के चलावे खातिर बिजली बनावे खातिर या तो कोयला लगता या हमनी के डीजल पेट्रोल की राशन लेके आवत नहीं जा। तो अगर हमनी के ऊर्जा के अंधाधुंध प्रयोग कल जाओ, कोनो रोक टोक ना कल जाए, तो ओकरा में अधिक से अधिक कोयला लग जाए, अधिक से अधिक पेड़ कटी, ओकरा खातिर हमारा अधिक से अधिक डीजल पेट्रोल मिला मंगवावे के पड़ी कि राशन तेल मंगावे के पड़ी। तो खाली इतने नहीं है, एक तो खपत होई बाहर से मंगावे में खर्च भी बा, और दूसरा जौन उ कार्बन के जौन उत्सर्जन होई, जौन मोटर पंप चले से, जौन डीजल पंप चले से, जौन धुआँ फेंकी, ओकरा से हमनी के जौन पर्यावरण संरक्षण बा ओकरा के बड़ी आघात पहुँची, पर्यावरण संरक्षण ओकरा से ना हो पाई। ऐसे जरूरी बा कि हमनी के ऊर्जा के बचत कर जा। देखिए एक बार जितना हमनी के जौन उपयोग करे नहीं जा, कोयला या पेट्रोल डीजल ये सब जमीन के अंदर से मिले वाला चीज बा, और एकरा के बने में हजारों हजार साल लग जाला। ये एक दिन के प्रक्रिया नहीं है, एक दिन के कोनो मशीन नहीं है जौन की बना के हमनी के दे देवे। ये चूँकि सीमित मात्रा में बा, एकर संसाधन कम बा, तो एकरा के हमनी के बचावे खातिर चाहिए कि ऊर्जा के सदुपयोग कर जाओ, ऊर्जा के संरक्षण कर जाओ। काहे से कि ये जौन बा तो बहुत आवश्यक बा। सरकार भी देखी पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर घर में सौर्य ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुँचावे के काम कर रहल बा, कारखाना चलावे के काम कर रहल बा। अब ये भी देखले हो कि डीजल पंप के बदला इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, कार आ गई, ओकरा से एक तो धुआँ ना निकली, दूसरा सौर्य ऊर्जा के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से ओकरा में ऊर्जा के संचरण हुई। उसे का फायदा हुई कि हमनी के कार्बन उत्सर्जन कम हुई और पर्यावरण के संरक्षण हुई। तो एकरा के बचावे खातिर जरूरी बा कि हमनी के ऊर्जा के संरक्षण कर जाओ, ये में समझदारी भी बा अगर कम से कम उपयोग कर जाओ। श्रोता भाई बहन, अगर जब हम ऊर्जा के बचत करतनी तो ओकरा पीछे हमनी के पर्यावरण के प्रदूषण से बचावतनी जा, और भविष्य खातिर प्राकृतिक संसाधन के सुरक्षित भी रखतनी जा, जौन के हमनी के आवे वाला जौन बाल बच्चा जौन बाणन परिवार के जौन सदस्य हुई हैं उनका के वो प्राकृतिक संसाधन मिल जाए। हमनी के चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण खातिर जरूरी बा कि कम से कम हमनी के समूह में रहल जाओ, एक पंखा से जरूरत होके जन अनावश्यक हर रूम में एक एक आदमी बैठ के या मोबाइल देखता टीवी देखता, बल्कि समूह में बैठ के देखे तो एक पंखा चली, दो पंखा के बचत हो जाए। अगर हम कहीं जातनी 10-20 कदम जाए के बाद 100-200 मीटर जातनी, लेकिन स्कूटर मोटरसाइकिल धड़ाधड़ चला के जातनी, ओकरा से भी हमनी के बचे के चाहिए, पैदल जाई ओकरा से ऊर्जा के बचत हुई। बहुत एक आदमी के यात्रा करे के बाद दूर तक जाए के बाद अगर संभव होके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग करी, जोना से कि कम ऊर्जा खपत होई और कम संसाधन में हमनी के गंतव्य पर पहुँच जाइए। तो यह से जरूरी बा ऊर्जा के संरक्षण कर जाओ। श्रोता भाई बहन, अब आई हमनी के सुनल जाओ बालेश्वर प्रसाद और साथी लोग के गावले लोकगीत, आई सुनल जाओ बोल बाटे बगिया में भंवरा।

Giovanni Bellini.

श्रोता भाई बहन, अब सुनल जाओ ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता। वार्ताकार बानी भूपेंद्र नारायण सिंह, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी बानी और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी भी बानी। आई सुनल जाओ भूपेंद्र नारायण सिंह जी से वार्ता, विषय बा ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पांख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
0: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
2: श्रोता भाई बहन, अभी हमनी के सुनत रहने आ जाए वो संदेश। और देखें, बरसात से पहले नाला के सफाई हो जाए से जल जमाव के खतरा कम हो जाला और जल जनित बीमारी से भी आदमी बचेला। कई तरह के बीमारी जोन बा वो पानी के चलते होखेला, गंदा पानी के चलते होखेला, मलेरिया, डेंगू, इस सब के बीमारी जोन बा, डायरिया बा, ये सब नाला के सफाई ना होके से गंदा पानी के चलते होखेला। लेकिन अब आई हमनी के सुनल जाओ
3: के साथ
2: उपेंद्र नारायण सिंह जी से ये वार्ता। विषय बा ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता।
4: संपूर्ण सृष्टि का मूल है, बगैर ऊर्जा के दुनिया की परिकल्पना ही बेमानी है। सृष्टि की रचना से लेकर आज तक जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू ऊर्जा पर ही आधारित हैं। ऊर्जा है तो जीवन है, ऊर्जा नहीं तो जीवन नहीं। जीवन के आरंभिक काल में काष्ठ ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत रहा और आज तक बना हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से लकड़ी को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने की परंपरा आज भी विश्व में सबसे अधिक प्रचलित है। विश्व के तमाम वन क्षेत्रों के आसपास से कोयले की निकासी होती है, जो एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा आदि आते हैं। इसके अलावे नैसर्गिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा व्यापक तौर पर उपलब्ध है, जिससे इस विज्ञान के युग में नित्य नए उपकरणों को संचालित किया जाने लगा है। विज्ञान जिस गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, उसका असर ऊर्जा की उपलब्धता पर भी सीधे पड़ रहा है। आज स्थिति उस ओर बढ़ रही है कि अगर प्रचलित पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जाओं में से कहीं भी कमी होती है, अर्थात उत्पादन और आपूर्ति के बीच खाई आती है, तो जनजीवन ठप हो जाता है। घर की रसोई से लेकर चांद पर यात्रा करने वाला चंद्रयान भी ऊर्जा की कमी से ठप पड़ जाएगा। तात्पर्य यह कि पहले ऊर्जा की सीमित ज़रूरतें थीं, परंतु आज ऊर्जा की ज़रूरतें असीमित होती जा रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश में आवश्यकता के अनुपात में ऊर्जा की उपलब्धता काफ़ी कम है। आज ऊर्जा उत्पादन के मुख्य स्रोतों में कोयला व पेट्रोलियम पदार्थों का स्थान प्रमुख है। इसके अलावे जल विद्युत के माध्यम से भी देश में ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि जितनी ऊर्जा की ज़रूरत देश में है, उतनी ऊर्जा के उत्पादन से हम काफ़ी दूर हैं। इसके बावजूद ऊर्जा की

उपाधि पर ध्यान न देना काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर पर्याप्त कार्य नहीं होना भी चिंता का विषय है। उल्लेखनीय है कि डेनमार्क जैसे छोटे देश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 25% से ज़्यादा विद्युत की आपूर्ति हवा से प्राप्त होती है। इसके लिए पवन चक्की से विद्युत उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत भी अब सक्रिय है और एक योजना के अनुसार आने वाले समय में 45,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल देश के तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी के समीप सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है, जहां से लगभग 380 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। हालांकि देश में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अकूत भंडार है, लेकिन उसका उत्पादन तकनीक विकसित नहीं हो पाया है और काफ़ी हद तक आयातित ऊर्जा से ही संतोष करना पड़ता है। इस कारण आर्थिक रूप से भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन स्थिति यह है कि ऊर्जा का विकल्प केवल ऊर्जा ही है। भारत में जितनी ऊर्जा की उपलब्धता है वह आवश्यकता से काफ़ी कम है। इसके बावजूद यहाँ ऊर्जा की बर्बादी पर काबू पाने के इंतजाम नहीं के बराबर हैं। घर हो या दफ्तर, कहीं भी ऊर्जा की बर्बादी प्रत्येक दिन देखने को मिलती है। घर से बाहर निकलते समय बत्तियां न बुझाना, पंखे चलते छोड़ जाना, यह आम बात है। दफ्तर बंद होने के समय भी वही आदतें दोहराई जाती हैं, जिससे प्रतिदिन सैकड़ों मेगावाट विद्युत बेवजह बर्बाद होता है। सड़क पर चलते वाहन को बगैर इंजन बंद किए ही रुककर कुछ न कुछ कार्य करते चालक अनायास ही दिख जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे इस छोटी मोटी हरकतों का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है? अगर हम विद्युत अथवा ऊर्जा के उत्पादन में अपनी रचनात्मक भूमिका नहीं निभा सकते, तो ऊर्जा को बेकाम के तौर पर नष्ट करने का अधिकार हमें किसने दिया है? ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, इसे गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर प्रतिदिन हम 1 या 2 घंटे भी ऊर्जा की बचत करते हैं, तो इतने बड़े देश में काफ़ी ऊर्जा की बचत होती है। आज भारत जैसे देश विकसित और विकासशील देशों में ऊर्जा संरक्षण एक चुनौती है और आवश्यकता भी। आज की संरक्षित ऊर्जा हमें कल के विकास में सहायक होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊर्जा की ज़रूरतें दिनानुदिन बढ़ती जा रही हैं, उसे देखते हुए ऊर्जा का संरक्षण आज की आवश्यकता हो गई है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारत में ऊर्जा की ज़रूरतों को देखते हुए नए स्रोतों की खोज जारी है। साथ ही पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षेत्र के माध्यम से नए ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की दिशा में कारगर प्रयास जारी हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यकता से काफ़ी कम है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ऊर्जा की खपत में तेजी से वृद्धि हो रही है, जबकि उस दर से उत्पादन नहीं हो रहा है। उत्पादन और खपत के इसी अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुके विकासशील एवं विकसित देशों को इस कारण भी ऊर्जा संकट का दंश झेलना पड़ रहा है। ऊर्जा संकट से उभरने के लिए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को लेकर कवायद तेज है। इस मामले में भारत को रूस एवं अमेरिका से काफ़ी मदद मिल रही है। इसके बावजूद ऊर्जा संकट से निपटने का सबसे आसान तरीका वर्तमान में ऊर्जा का संरक्षण ही है। इस परिस्थिति में प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य बनता है कि ऊर्जा के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई जाए, क्योंकि बगैर ऊर्जा के आज कुछ भी संभव नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना होगा

कि ऊर्जा का यथासंभव संरक्षण किया जाए, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण आज की प्रमुख आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण में ही देश का विकास और भविष्य सन्निहित है।

श्रोता भाई बहन, अभी हमने के सुनत रहनी हजा ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता। बहुत बढ़िया जानकारी देनी है भूपेंद्र नारायण सिंह जी यहाँ के बतौनी है कि कैसे हमने के ऊर्जा के संरक्षण कर जाओ, जौना से कि भविष्य खातिर हमने के बाल बच्चन खातिर भी ऊर्जा के संरक्षण हो सके, पर्यावरण के संरक्षण हो सके, और हमने के का करे के चाहिए। तो यहाँ के बहुत बहुत हमने के धन्यवाद दिहल जा कि ये एक एक चीज़ यहाँ के बतौनी है। तो हमने के भूपेंद्र नारायण सिंह जी, उनके वरिष्ठ पत्रकार भी बानी और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी भी बानी, तो हमने के यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद दिहल जा। और अब चलत चलत आज के मौसम के मिजाज पर भी जानल जाओ। श्रोता भाई बहन, देखें नाला के सफाई बहुत जरूरी बा। गंदगी जहाँ रही वही जा आदमी अस्वस्थ बनल रही। गंदगी जौन है तन अस्वस्थता के सबसे बड़ा कारण है। ऐसे हमने के चाहिए कि अगल बगल में साफ सफाई अपन रखल जा और जितना बड़ नाला बा ओकर उड़ाही हो जाए। और एकरा खातिर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के माध्यम से सरकार राशि भी उपलब्ध करावेला कि भाई नाला से बरसात से पहले नाला के सफाई हो जाए, ताकि बरसात के जौन पानी बा तौन बाहर निकल जाए, वो जल जमाव मत होके, ताकि हमनी के बचावल जा सके, आम आदमी के भी जीवन खतरा में मत पड़े। अब आज के मौसम पर हमनी के निकल जाओ। आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहल है। आर्द्रता रहल है 55%, और कल 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहे के संभावना बा। तो श्रोता भाई बहन, अब कार्यक्रम के समय उड़ा रहल बा, कार्यक्रम संपन्न करे के अनुमति दें। सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई के ओर से प्रणाम, और आज के कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहनी है संतोष कुमार जी।

यह था ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:40 हुए हैं। सांझ गीत के तहत लीजिए सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत।

आपन माटी आपन देश, अभी आपने इस फिल्म में उदित नारायण के साथ खुशबू जैन को सुना। एस के चौहान के लिखे गीत की तर्ज बनाई थी आरपी ठाकुर ने। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार सानू की आवाज़ में। राजेश के लिखे गीत की तर्ज बनाई है लाल सिन्हा ने। फिल्म है कुर्बानी।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आइए सुन लेते हैं, चंद्राणी मुखर्जी और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं वीरेंद्र पांडे और मुन्ना जी, संगीतकार हैं सुरेंद्र कोहली। फिल्म का नाम है कब आई हैं दुल्हा हमार।

0: चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की गाई इसी गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से ममता का आंचल ये कार्यक्रम लेकर आ गया। आप सारे लोग अब तक जान चुके हैं और जिन्होंने आज से हमारा ये कार्यक्रम सुनना शुरू किया है उनको बता दें कि ये कार्यक्रम डेडिकेटेड है, उनके लिए है जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है और वो समझ रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी है या बहुत बड़ी कुछ बीमारी हो गई है या उनके किस्मत में यही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि अगर जो बच्चा नहीं हो रहा है तो एक कोई बीमारी छोटी सी हो सकती है, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाइए और निश्चित रूप से आपको बच्चा होगा। और IVF पद्धति आज की तारीख में सबसे सक्सेसफुल पद्धति है वैसे कपल के लिए जिनको शादी के 2-3-4 साल हो गए अभी भी बच्चा नहीं है। और IVF भी अगर सही समय पर करवाया जाए ना तो सक्सेस रेट बहुत है, 10 में से 6-7 कपल को सक्सेस

मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। इस कार्यक्रम ममता का आंचल में हम डॉक्टर श्रद्धा चखियार से बातचीत करते हैं, आईवीएफ विशेषज्ञ हैं और बहुत ही उम्दा आईवीएफ सेंटर है श्रद्धा आईवीएफ एंड मेटर्निटी भिकना पहाड़ी मोर पटना में, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम आपके घर आंगन में लेकर आ रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार के अंतिम व्यक्ति तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंचे और वो इसका लाभ उठाए। आपसे भी आग्रह है कि अगर आपकी नजर में अगर कहीं भी कोई कपल है ऐसा, तो उन तक आप बातें पहुंचाइए। बड़े बुजुर्गों, आपसे भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में इस तरीके की समस्या है, बच्चा नहीं है आपके, बेटा बेटी या पतो किसी को भी बच्चा नहीं है, तो आप उन्हें ये नंबर जो हम दे रहे हैं दे दें या आप खुद बात कर लें। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266, 9162562266। इस नंबर पर बात करें और समस्या का समाधान निकलवाएं।

0: पतो किसी को भी बच्चा नहीं है, तो आप उन्हें ये नंबर जो हम दे रहे हैं दे दें, या आप खुद बात कर लें। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है, 9162562266, 9162562266। इस नंबर पर बात करें और समस्या का समाधान निकलवाएं। मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, हाँ इलाज होता है, इलाज कराएं और बच्चा पाएं। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा चकैयार हमारे साथ बैठी हैं स्टूडियो के अंदर, आज हम इनको बुलाते हैं और सबसे पहला सवाल हम आपसे पहले बता देते हैं करेंगे कि निसंतानता क्या होती है, एक बार फिर से वैसे कपल के लिए जो सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं या जो नए जुड़े हैं हमसे उनके लिए। डॉक्टर श्रद्धा आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ममता का आंचल कार्यक्रम में।
1: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
0: डॉक्टर श्रद्धा जैसा कि आपने सुना पहला सवाल बिना लाग लपेट के, निसंतानता क्या होती है हमें बताएं एकदम घर के मेंबर की तरह।
1: बिल्कुल, ये जानना जरूरी है हर उस दंपति के लिए जो बच्चा की इच्छा कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर आप सही समय पे इलाज कराएंगे तभी आपको आपको जल्दी बच्चा ठहर जाएगा। तो निसंतानता उस दंपति को कहते हैं, वैसे दंपति को जिनके शादी के एक साल हो गए और पिछले एक साल से वो कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं ठहर पा रहा है,
0: हाँ।
1: तो वैसे दंपति को निसंतान दंपति कहते हैं।
0: अच्छा,
1: और अगर एक साल हो गया तो अब जरूरी है जांच कराना, जांच ये जानने के लिए कि कहाँ दिक्कत है, पुरुष में दिक्कत है, औरत में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है या बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है।
0: कारण बता रही
1: हैं। बिल्कुल, अगर जो भी कारण हो अब आप जांच कराएं और इलाज कराना शुरू करें। लेकिन अगर दो साल हो गया है और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा है तो अब जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिलें और उन्हीं से इलाज कराएं।
0: हाँ।
1: क्योंकि निसंतान रोग विशेषज्ञ आपका बीमारी बेहतर समझेंगे, आपका सही इलाज करेंगे और सही समय पे इलाज करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपका समय निकलता जाएगा
0: जी,
1: उस दंपति को बच्चा ठहरने की जो क्षमता है वो घटते जाएगी। क्योंकि बच्चा ठहरने के लिए एक सबसे बड़ा जो मापदंड होता है वो उम्र होता है
0: जी, जी।
1: तो जैसे जैसे उम्र निकलता जाएगा बच्चा ठहरने का जो जो क्षमता होता है उस दंपति का वो घटता जाएगा,
0: कम होता जाएगा।
1: तो हाँ। सही समय पे आप अगर निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलते हैं और सही इलाज करते तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको बच्चा ठहर जाएगा।
0: आपको बच्चा ठहर जाएगा मतलब डॉक्टर श्रद्धा ने साफ साफ कह दिया कि एक छोटी सी बीमारी है निसंतानता, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है और विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए जरूर इसका समाधान निकलेगा। बहरहाल ममता का आंचल ये कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम बता रहे हैं आगे से, हाँ अपनी तरफ से, और संकोच नहीं करना है, अगर थोड़ा सा भी कोई हाँ हिच है, कोई समस्या है तो आप बात कीजिए 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। हम आगे से नंबर दे रहे हैं इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि डॉक्टर साहिबा खाली होंगी नहीं होंगी या हम पूछे नहीं पूछे, देखिए बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं और रास्ता जरूर निकलेगा। एक बात बताते हैं, श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, हम जानते हैं आपका राजेश जानता है कि बहुत ही उम्दा संस्थान है, डॉक्टर श्रद्धा सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट के बीच में एक परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। जहां तक पैसे की बात है, अगर पैसे से कोई संकोच है, अमूमन पैसा मांगने में या पैसा नहीं होने पर संकोच होता है, तो अब संकोच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, ध्यान से सुनिएगा, 24 महीने के अंदर आपसे पैसा लेगा धीरे धीरे टुकड़ों में EMI पर। आप इलाज करवाइए ना, संतान सुख प्राप्त कीजिए ना, पैसा तो होता रहेगा, पैसा जाता रहेगा और आपके गोद में आपके घर में किलकारी गूंजती रहेगी। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आपने तो ये सारी चीजें बता दी, निसंतानता कारण, इलाज क्या है इसका, वो भी छोटे में बता दीजिए थोड़ा, अगर घर में भी अगर महिलाएं या पुरुष अगर।
1: बिल्कुल, निसंतानता का इलाज जो होता है वो सबसे पहले शुरू होता है लाइफस्टाइल से, यानी कि अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए। जिनका वजन, अगर औरत का वजन ज्यादा है तो वजन कम कीजिए, अगर वो दंपति में कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब लेता है तो उन चीजों को बंद करना होगा, घर की बनी हुई साग सब्जी खाइए, बाजार के जंक फूड्स जो होते हैं वो सब खाना बंद कीजिए, ताकि ये भी छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनसे बच्चा जो निसंतान दंपति अपनाए तो उनको बच्चा ठहर जाता है। लेकिन अगर ये सब भी

0: कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो अब जरूरत है कि अब आप गोलियां खाएं। बहुत लोग को सिर्फ गोली सुई और इंजेक्शन,
1: निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने के बाद,
0: बिल्कुल हाँ। निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने के बाद, क्योंकि वो जानते हैं क्या सही गोली है, क्या इंजेक्शन है और उस इंजेक्शन का टाइमिंग क्या होना चाहिए, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चा ठहरने के लिए। तो अगर बहुत, इनफैक्ट 70% लोग तो सुई दवाई से ही उनको बच्चा ठहर जाता है, 80% लोग को,
1: जी जी,
0: लेकिन वो 20% जिसको बच्चा नहीं ठहरा, मतलब अब उनका बीमारी गहरा है, तो अब उनको इलाज की जरूरत है। इलाज अब उनको हो सकता है कुछ छोटे दूरबीन के प्रोसीजर्स होते हैं जिसको लैप्रोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, हो सकता है वो करना पड़े, हो सकता है उनको IUI करना पड़े। लेकिन जिनको इन चीज़ों से भी नहीं बच्चा ठहर रहा है, तो अब ज़रूरत है IVF कराने का। IVF एक बहुत ही सटीक तरीका है निसंतान दंपतियों के लिए बच्चा ठहरने का, और इसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। जितने भी इलाज है, आप गोली सुई और भी कुछ करा लीजिए, लेकिन IVF से बच्चा ठहरने का जो चांस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कोई दंपति अगर अपना IVF कराता है तो 60-70% लोग को बच्चा ठहर जाता है।
1: इसीलिए तो कहते हैं संकोच नहीं करना है, इलाज कराना है ना,
0: बिल्कुल
1: आवाज उठानी है, मुझे डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर के पास जाना है। रास्ता आसान हो जाएगा और आसान होगा इस नंबर से जब आप डॉक्टर श्रद्धा से बातचीत करेंगी या करेंगे। 9162562266 9162562266। डॉक्टर श्रद्धा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फोन किया है और पूछना लाजमी भी है। बहुत जगह कहा जाता है कि सस्ते में IVF हो रहा है और बहुत जगह कहा जाता है महंगे में IVF हो रहा है, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि हमने सुना है कि IVF पद्धति में थोड़ा खर्च होता है, तो क्या जो सस्ते में कर रहे हैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या क्या क्यों कैसे सस्ते में हो रहा है?
0: देखिए, ये तो जानना पड़ेगा, सस्ता अगर कुछ हो रहा है तो वो मतलब जो IVF का सस्ता और महंगा क्या आप बोल रहे हैं वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप जो इलाज करा रहे हैं उस चीज का स्टैंडर्ड मेंटेन है कि नहीं। सस्ता में ऐसा ना हो कि जो इंजेक्शंस, जो कि IVF के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, कहीं उस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, कहीं लैब क्वालिटी जो लैब मेंटेन हो रहा है कहीं वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, क्योंकि IVF लैब को माँ का गर्भ बोला जाता
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो माँ का गर्भ जितना स्वच्छ होता है उसी तरह से IVF लैब को मेंटेन करना होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: कहीं वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है
1: हाँ।
0: या फिर कहीं जेनेटिक जो होता है सेफ्टी प्रोटोकॉल जो हाँ। कि सबसे जरूरी और हर दंपति हर माँ बाप का हक है, कहीं वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है
1: जी।
0: अगर इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, इन चीजों का स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है, मतलब वो IVF जो हॉस्पिटल है वो मेंटेन्ड है, वहाँ सही काम हो रहा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप इन सभी चीजों के जहाँ आप इलाज करा रहे हैं वहाँ इन सभी चीजों को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं।
1: श्रद्धा, IVF एंड मैटरनिटी एक वाजिब सा सवाल हम आपसे पूछेंगे, इसको अन्यथा ना लेंगी, क्या ये सारे मापदंडों पर खड़ा उतरता है?
0: बिल्कुल, हमने जो अपना हॉस्पिटल, हमारा जो श्रद्धा IVF है, इसमें गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट ARTI रूल है
1: जी,
0: हमारा हॉस्पिटल उसी तरह से बना है। PCPNDT का जो रजिस्ट्रेशन होता है हमने वो कराया है, और हम समझते हैं हर दंपति का दुख जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, इसलिए हम हर दंपति को जो उच्चतम जो स्तर होता है, जो ना हम इंजेक्शन के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं
1: जी,
0: ना IVF लैब का जो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और हम जो भी करते हैं हर चीज पेशेंट को समझाते हैं ताकि पेशेंट समझ सके कि क्या इलाज हो रहा है, ताकि हम उनको सही इलाज कर पाए जिससे उनको अच्छा रिजल्ट मिले और जो पेशेंट भी सैटिस्फाइड रहे।
1: एक सवाल और, अगर पेशेंट जाता है क्लिनिक में तो उसको तो ये पूछने का हक है, पूछ सकता है ये सारी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर पेशेंट का हक है, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको जानना चाहिए कि आपका खर्चा कितना होगा, उसमें कोई हिडन कॉस्ट, छुपा हुआ खर्चा
1: exactly.
0: तो नहीं है
1: हाँ, हाँ.
0: और अगर ये जो खर्चा है उसमें उसका ब्रेकडाउन पता होना चाहिए
1: हाँ.
0: कि इस खर्चे में आपको क्या क्या सुविधा उपलब्ध होगी
1: जी.
0: और कुछ अलग से अगर

0: कुछ अलग से अगर खर्चा होगा तो वो पहले दिन ही पता होना चाहिए, ताकि पेशेंट हर तरह से प्रिपेयर्ड हो और निसंतानता का इलाज उनके लिए बोझ ना हो, बल्कि ये रास्ता उनके लिए मधुर हो, ताकि जब बच्चा मिले वो और अच्छा खुशी का पल मिले,
1: खुशी का पल मिले। बिल्कुल सही है। देखिए, सारी बातें हम खोल के रख देना चाहते हैं ममता का आंचल इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी से डॉक्टर श्रद्धा हर सप्ताह नियम से आ रही हैं, वर्षों से, आपको जानकारियां देने, आपको सचेत करने। एक बात बता दें, पैसे की चिंता अगर है तो उसकी चिंता कीजिए नहीं, है ना। सस्ता या महंगा नहीं, क्वालिटी देखिए, का सुविधा मिल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। श्रद्धा आईवीएफ में 24 महीने में आप ईएमआई पर पैसा दे सकते हैं और वही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं आपको मिलेंगी। बड़े बुजुर्गों, आपके लिए नंबर हम बता रहे हैं, पहले नोट कीजिए एकदम आराम से, 9162562266। और नंबर एक बार रिपीट कर रहे हैं, 9162562266। चलते चलते कुछ कहना है डॉक्टर श्रद्धा तो बोल सकती हैं, बताइए।
0: मैं ये कहना चाहती हूँ हर दंपति को जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, ये सफर डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपका ये सफर सुखद हो। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम चार कदम आगे बढ़ के आपका हाथ थामेंगे और इस सफर में हम आपका साथ देंगे, ताकि आपको भी जल्दी संतान सुख प्राप्त हो।
1: और चलते चलते हम भी एक बात कहना चाहते हैं, चुप्पी किसी चीज का समाधान नहीं है, चुप्पी तोड़िए, विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे डॉक्टर श्रद्धा चखैयार से बात कीजिए और अपने लिए एक खुशनुमा जिंदगी तलाश लीजिए। और इसके लिए चलते चलते एक बार फिर से हम श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी का नंबर बताना चाहेंगे, नंबर है 9162562266, 9162562266। राजेश और डॉक्टर श्रद्धा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा आईवीएफ भिखना पहाड़ी पटना 4।
3: ममता का आंचल अभी आप सुन रहे थे, यह प्रायोजित कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से प्रसारित किया गया। गुड इवनिंग रोहतास।

रोहतास जिला समाहरणालय से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले पंचायत विकास दिवस के तहत आज दिनांक 28 जून 2026 को रोहतास जिले के ग्राम पंचायतों में व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में नासरीगंज प्रखंड के पड़ोरी पंचायत भवन में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी सचिव रोहतास, सह सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार श्री संदीप कुमार आर प्रतुलकट्टी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं आम नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य पंचायतों को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जन कल्याणकारी बनाना है, ताकि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि पंचायत विकास दिवस का उद्देश्य पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, आम जन को सरकारी योजना

भावनाओं के प्रति जागरूक करना तथा स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराएं। जिला प्रभारी सचिव ने पंचायत स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस माह के विशेष कार्यक्रम का मुख्य विषय यानी थीम था महिला हितैषी ग्राम पंचायत, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। जिले के पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, वार्ड सदस्य इत्यादि, ग्राम सभा के सदस्यों, युवाओं और जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर त्वरित कार्रवाई हेतु रोड मैप तैयार किया गया। थीम के अनुरूप पंचायतों में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। वहीं एक अन्य सूचना के मुताबिक राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज दिनांक 28/6/2026 को रोहतास जिले के विभिन्न पंचायतों में पंचायत विकास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा सामाजिक जागरूकता एवं जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें मद्य निषेध एवं सामाजिक जागरूकता से संबंधित संदेश दिए गए। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जिले की पंचायतों में महिलाओं के बीच शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कला जत्था के माध्यम से नाटक एवं गीत संगीत की प्रभावशाली प्रस्तुति देकर शराब के दुष्प्रभावों और इसके सामाजिक असर के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। शिक्षकों ने भी बिहार सरकार की मद्य निषेध नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला। जीविका दीदियों द्वारा प्रभात फेरी निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने रैली निकाली तथा विचार गोष्ठी आयोजित कर लोगों को जागरूक किया। साथ ही कल्याण विभाग द्वारा भी आदिवासी, दलित एवं महादलित बस्तियों में प्रभात फेरी एवं जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुँचाना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा लोगों को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। आइए सुन लेते हैं एक गीत।

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और इसी के साथ ही सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: एक बेटा और दो बेटी के बाप अरुण बाबू
0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भाग्य गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बम्बर में पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया, कहा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हो रहा है पंचायतों का विकास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। और मौसम विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना और भोजपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जून तक बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आज कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमान क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को तेजी मिल रही है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि भारतीयों के सामूहिक प्रयास से हम विकट स्थितियों में भी हमेशा विजयी रहेंगे। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था।

0: मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत पीड़ित परिवारों को लाभ पहुंचाया है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि एक नए अवतार के रूप में यह भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए।
0: जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन जन की भावनाओं का आधार बन चुका है। नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नवीन ने कहा कि ये देश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म है।
2: पूरे देश के अलग अलग स्थानों पर जो सकारात्मक प्रयास होते हैं, उन प्रयासों को माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो प्लेटफॉर्म मिलता है, कहीं ना कहीं पूरे देश के और दुनिया के लोग जान पाते हैं कि भारत के लोग स्वतः कितने सारे प्रयास करते हैं, उन प्रयासों से समाज को कितना बड़ा प्रेरणा मिलता है। और मैं मानता हूं कि आज जो उन्होंने एक शब्द दिया है कैच द रेन, मैं मानता हूं कि अपने आप में ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से जलवायु संरक्षण और जल संरक्षण को एक बहुत बड़ा एक मैसेज है।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी और प्रेरणादायी कार्यक्रम बन गया है।
3: प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी प्रेरणादायी कार्यक्रम बन चुका है। और आपने देखा होगा, इसमें राजनीति की एक बात नहीं कर प्रेरणा की बात करते हैं। देश के विभिन्न भागों में जो स्वस्फूर्त प्रेरणादायी काम कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं।
1: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। विभिन्न जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए थे। वहीं रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। हमारे बांका संवाददाता ने बताया कि जिले में 1123 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। अररिया जिले के 19 केंद्रों पर एक पाली में परीक्षा का आयोजन किया गया। अन्य जिलों में भी कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न हो गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
1: आज पंचायत विकास दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो पूरी व्यवस्था खड़ा किया है कि साल में 12 बार बैठक होगी। साथियों, अभी तक टाइम फिक्स नहीं होता था, कभी 2 अक्टूबर कभी 26 जनवरी, ये सब हम लोग समय तय करते थे। लेकिन अब पंचायत विकास दिवस के अवसर पर प्रत्येक जो अंतिम इतवार होगा उस दिन पंचायत विकास दिवस मनाने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने उनके नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिला रोजगार योजना के तहत शेष बचे लाभार्थियों को भी राशि दी जाएगी।
1: इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान की चिंता किया है। महिला रोजगार से जोड़कर लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को रोजगार योजना के तहत उनको राशि दिया। अब आगे भी दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अगले महीने जब कोई हमारे प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी जब बिहार आएंगे और हमारा 100 दिन भी आपके आशीर्वाद से जब पूरा होगा, तो हम लोगों ने तय किया है जो महिलाएं छूट गई हैं उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
0: मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अपराध को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सफाई अभियान जारी रहेगा।
1: बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। अब हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। विभिन्न पंचायतों में विकास शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया गया। एक रिपोर्ट।
2: महिला हितैषी ग्राम पंचायत विषय को लेकर आज प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाएगा। मधुबनी जिले के महिनातपुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री लेशी सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतें हमारी लोकतंत्र की आधारशिला है, इनका विकास अत्यंत आवश्यक है।
3: पूरे राज्य में पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि हमारा जो पंचायत है सबसे नीचे की इकाई और सबसे मजबूत इकाई सशक्त हो, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित हो और हमारा पंचायत इकाई मजबूत हो।
2: दरभंगा के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर सहोरा मध्य विद्यालय में आयोजित विकास शिविर का उद्घाटन पथ निर्माण सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र और वन एवं पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। मधेपुरा के मानिकपुर पंचायत में जिले की प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शेखपुरा जिले की सभी 49 पंचायतों में पंचायत विकास शिविर आयोजित किया गया। शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और गया समेत विभिन्न जिलों के पंचायतों में विकास दिवस पर शिविर लगाकर पंचायतों में छूटे हुए विकास कार्यों पर चर्चा हुई और पंचायतों के समग्र विकास का संकल्प लिया गया। समाचार कक्ष से निधि श्री।
0: राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
4: राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बक्सर, भोजपुर, भभुआ, पटना, जहानाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य

0: भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने भीषण गर्मी के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में पठन पाठन 30 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इधर भोजपुर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन पाठन 30 जून तक स्थगित कर दिया है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। सभी स्कूलों में 4 जुलाई तक वर्ग 8 तक पठन पाठन का कार्य पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही होगा। नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊआ कटहरी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। संबंध में 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से कई हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण तथा सामग्री बरामद की है। 28 जून से 2 जुलाई तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान 2026 के तहत आज विभिन्न जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बांका, सुपौल, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज समेत विभिन्न जिलों में पोलियो मुक्त अभियान के तहत बच्चों को जीवन रक्षक दवा की 2 बूंद पिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज दिघल बैंक प्रखंड के कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिलाधिकारी ने डोडरा पुल का अप्रोच जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। सुपौल जिले के बीरपुर में भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी ने जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। बांका जिला कार्यान्वयन समिति की आज बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व और भूमि सुधार मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भाग्य गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बंबर में पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया, कहा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हो रहा है पंचायतों का विकास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। और मौसम विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना और भोजपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जून तक बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मुंगेर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
3: जिले में मुहर्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी, जबकि जुलूस मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई। राज्य में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जी रामजी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुंगेर के जिला परिषद सभागार में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय और भागलपुर के 41 प्रतिभागी शामिल हुए। बिपार्ट पटना के मास्टर ट्रेनरों के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और ऑनलाइन मॉड्यूल की जानकारी दी। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिकर ने कहा कि प्रशिक्षण किसी भी नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन की आधारशिला है और यह अधिनियम ग्रामीण विकास एवं मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विश्ववर्ती श्रावणी मेला और कांवर यात्रा की तैयारियां जिले में तेज हो गई है। मुंगेर से गुजरने वाले 26 किलोमीटर लंबे कच्ची कांवरिया पथ पर पेयजल, स्वच्छता और स्नान संबंधी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 295 चापाकलों की मरम्मत शुरू कर दी है। इसके अलावा 30 नए चापाकल लगाए जाएंगे। 150 अस्थायी तथा 20 अस्थायी शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार ने गैर मजरूआ जमीनों की अवैध खरीद बिक्री रोकने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जिले के 18,741 प्लॉटों को रोक की सूची में शामिल किया गया है। जिला अवर निबंधक अश्वनी कुमार ने बताया कि सूची में शामिल किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी और निबंधन से पहले सभी भूखंडों का विभागीय रिकॉर्ड मिलान किया जाएगा। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अब भी

0: संख्या में लाभुकों की केवाईसी और आधार सीडिंग लंबित है। जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार जिले में 149,301 पेंशनधारियों में से 27,167 ने केवाईसी नहीं कराया है, जबकि 1,707 लाभुकों का आधार बैंक के खाते में से लिंक नहीं है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक राजीव रंजन ने सभी प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिए हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन इस बार जमालपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। IRCTC के अनुसार 14 जुलाई से शुरू होने वाली 13 दिनों की इस यात्रा में श्रद्धालु तिरुपति बालाजी, रामेश्वर कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, मीनाक्षी मंदिर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। राज्य सरकार की पहल पर जिले में LPG आधारित आधुनिक शब्दागृह स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। नगर निगम को इसके लिए लगभग 1 एकड़ भूमि की उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने 45 डिसमिल जमीन उपलब्ध करा चुका है, जबकि शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। परियोजना पूरी होने पर लोगों को आधुनिक और सुविधाजनक अंतिम संस्कार व्यवस्था का लाभ मिलेगा। मुंगेर विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह 3 जुलाई को किला परिसर स्थित परीक्षा गृह में आयोजित किया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति सह राज्यपाल सैयद अता हसनैन करेंगे। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान द्वारा हवेली खड़गपुर प्रखंड के बिलिया गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जैविक खाद के उपयोग तथा नियमित मिट्टी जाँच के महत्व की जानकारी दी। बख्तियारपुर में आयोजित बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में तारापुर के सिनितिक केसरी ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। DAV बोकारो के छात्र सिनितिक की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से ADR भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से बचने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंगेर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ई मन पसंद। ई मनपसंद कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सब प्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी।

तो इस गीत को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोतागण। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर

जिला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय की पसंद थी। और ये दत्तरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की भी फरमाइश थी और इसे पसंद किया था आपने भी। आप हैं वंडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती, अरोड़ा। श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा गैम्बलर फिल्म से। साधना सरगम के साथ कुमार सानू को सुनते हैं और इस गीत को सुनने के लिए हमें आपने मेल किया है। आप हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। इसी गीत को आपने भी सुनना चाहे। आप हैं गोविंदपुरा नीमका थाना राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और आपकी सहेलियां। और ये एक फरमाइश है महावीर स्थान सासाराम कुराइज के श्रोतागण। आप हैं अयोध्या भगत, शिव पूजन भगत और तुलसी भगत तथा समस्त भगत परिवार की ओर से ये फरमाइश आई है इस गीत के लिए। तो हम आपको सुनवा रहे हैं गैम्बलर फिल्म का नगमा, जिसे लिखा है नवाब आरजू ने, तर्ज बनाई है अनु मलिक ने। बहुत ही बेहतरीन नगमा ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

तो श्रोताओं, हूँ गैम्बलर फिल्म के इस गीत को आप भी सुनना चाहते थे। आप हैं ग्राम नौहौना प्रखंड सासाराम से, भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। आपकी ओर से एक शेर भी है जिसका स्वागत है। जी हाँ, आपने लिखा कि आँखों को जब किसी की चाहत हो जाती है, उसे देख के ही दिल को राहत हो जाती है। बहुत खूब और बहुत धन्यवाद इस शेर के लिए। चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं क्रांति फिल्म का एक बहुत ही लोकप्रिय नगमा, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। संतोष आनंद के शब्द हैं और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। और इस गीत को सुनने के लिए जी हाँ, फरमाइशें आपकी आई हैं श्रोताओं। आप हैं ग्राम व पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहात से, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार की ओर से ये फरमाइश आई है। और टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से आप हैं इस गीत को सुनने वाले। जी हाँ, अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, आपका मेल हमें मिला। और एक और फरमाइश इस गीत के लिए है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से आप हैं जो सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षदा देशमुख और समस्त देशमुख परिवार की ओर से ये फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो चलिए हम आपको सुनवा देते हैं आपकी फरमाइश का क्रांति फिल्म का ये नगमा, बहुत ही लोकप्रिय रहा अपने समय में। लीजिए, सुनिए।

सपनों के नशे मन को हर बार सजाना, होली दिवाली ईद मिलजुल के मनाना, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में गर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना, गर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना। बहुत ही बेहतरीन नगमा, लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम का अगला गीत अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति के जुगल स्वरों में अनजान के लिखे गीत की तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने। फिल्म का नाम है नाकाबंदी और इस गीत को सुनना चाहते हैं सेक्टर

67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, और नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहाकर, निर्मला नोहाकर, विशाल नोहाकर, सरकापुर महाराष्ट्र से सोपान तायडे, नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर ने भी इस गीत को सुनना चाहा है, और साथ ही साथ आप हैं वैशाली शैलेश गंवाड़कर, सुमित गंवाड़कर, कुमारी धनी गंवाड़कर, परी प्रिंस, एकांश गंवाड़कर, और ये आपने लिखा कहाँ से है, ये शायद आपने छोड़ दिया है लिखना, तो आप अपना पता भी लिखेंगे अगली बार से। चलिए हम आपको सुनवा देते हैं आपकी फरमाइश का यह गीत।

साथी, जी हाँ, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की मिलीजुली आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है नौशाद ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, और नूरमहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मेल किया है मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नूजहत जहानाज, साजिया शाहिनाज, नाजिया नूरीनाज, और कलीर बिहार से निकहत प्रवीण, सदफ आरजू और सादिक तस्नीम आलिशा ने। और इसी गीत को सुनने के लिए एक और मेल हमें दिख रहा है। जी हाँ, आप हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। लीजिए सुनिए, बहुत ही प्यारा नगमा, बहुत ही मीठा गीत, यह रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: स्वागत है एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं गजल फिल्म का एक नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है मदन मोहन ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित सुमित, अमन पराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित जी, और भोपाल बाड़ी उदयपुर राजस्थान से आप हैं ललित चौरड़िया और स्नेहलता जैन। और इसी गीत के लिए आपने भी हमें मेल किया। आप हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, और बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, और ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं गजल फिल्म का ये गीत इन शब्दों के साथ कि रंग बरसेगा नूर बरसेगा, रंग बरसेगा नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा, आज की रात सुरमयी है, सुरों का बादल ज़रूर बरसेगा।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुन लेते हैं सावन को आने दो फिल्म का एक नगमा, जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज़ों में। गौहर कासपुरी ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है राज कमल ने और इसे सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह बड़क सिंह, ग्राम खलबत गढ़नोखा से मोतीमाला गुप्ता लाल बिहारी सिंह बीरा सिंह, और नगर पंचायत दिनारा से आप हैं जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ और अर्पित। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और साथ ही साथ टोरोवाल गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से आप हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, वेबी वामिका और वाणी थांदी। और जी हाँ, छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से आप हैं अहमद भाई फुलवाले, दुखनी रानी सदफ फारजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बीटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फुलवाले, लक्ष्मीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फुलवाले और समस्त फूल वाले परिवार की ओर से ये फरमाइश है। और पटेल नगर मालवोट से इस गीत को सुनना चाहते हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और कुछ एक और जो ईमेल दिख रहे हैं आपकी ओर से उनमें जिक्र है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का, और ये है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई सिल्लोड से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके और यज्ञेश घोटके की ओर से भी मेल आया है। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आप हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल, और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीना देवी गोस्वामी, योगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। जी हाँ, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये नगमा, लीजिए सुनिए।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह।

0: सावन अति पावन मन भावन। जी हाँ, इन्हीं गीतों के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी चाहता है आज्ञा नमस्कार। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, कीजिए थोड़ा इंतजार।
1: बादल से रस रंग बरसे प्यासा मन का है को।
2: संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
3: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
3: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।

0: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा

0: था कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत

0: बीरपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोकधारा कार्यक्रम में कुछ लोकगीत।

ये थी सुधा सिन्हा और आप बरसाती गीत सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन ललन सिंह गहमरी की गाई इस रचना के साथ।

ललन सिंह घमरी से अभी आप निर्गुण सुन रहे थे और इसी के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। महफिल गज़लों की इस महफिल में सबसे पहले समाज फरमाइए ग़ुलाम अली को। गुलकार हैं फैज़ अहमद फैज़।

अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में अब्राहम अश का लिखा यह गीत। और इन्हीं रचनाओं के साथ ही आज की ये महफिल अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया।
1: बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है। आया, आया।

28 जून साल 1971, दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था।

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलें कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की ये डेब्यू फिल्म

2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

डेल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं, जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेड्स मनु, रांझणा, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओं, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शेफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर। देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। रस रंग एल्बम सॉन्ग्स के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं सुधांशु पांडे को।

तो अभी आपने सोनू निगम को सुना, और श्रोताओं आइए सुन लेते हैं शंकर महादेवन का गाया ये एल्बम सॉन्ग।

एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। अभी आपने शंकर महादेवन को सुना, आइए सुनते हैं आलिशा की गई एक रचना।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अनुराधा पौडवाल की गई इसी रचना के साथ ही एल्बम सॉन्ग्स का हमारा कार्यक्रम रस रंग अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। रात की तन्हाई, सुनसान रास्ता, दूर मंजिल, सितारे ही सितारे, शांत और खामोश मंजर। जी हाँ, ऐसा लगता है मानो हम किसी अनजान रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन यदि मंजिल सामने मुस्करा रही हो तो उस आनंद के भला और क्या कहने। आंखें मूंद कर बैठे हों तसव्वुर में किसी के, ऐसे में कोई झम से आ जाए तो क्या हो।

यदि घटाटोप अंधेरा छा जाए तो क्षमा ही तो है जो अंधेरे को दूर करती है, तीरगी हटाती है। क्षमा पिघलती रही, रात ढलती रही। क्षमा सर पर आग लिए खड़ी है कसम खाने को, मैंने कभी नहीं जलाया किसी परवाने को।

अजब है रात से आँखों का आलम, ये दरिया रात भर बहता रहा है। सुना है रात भर बरसा है बादल, मगर एक शहर जो प्यासा रहा है।

झील में चांद नजर आए, ये हसरत उसकी। गहरे पानी में लिए बैठा हूँ सूरत उसकी।

तुम तो आसमां की बुलंदियों से लौट आए, हमें ज़मी के मसाइल बुलंद करने हैं। श्रोताओं, आपने आज जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं मेरे सनम, आशिक, चराग और संयोग। और इन्हीं गीतों के सहारे आज के चित्रपट तराने कार्यक्रम को समाप्त करने की संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। जी हाँ, प्रातःकालीन सभा में 7:30 पर आप सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास, सुनना नहीं भूलिएगा। 8:20 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

8:45 पर आप सुनते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और 9:10 पर सुनिएगा गीत मलिका।

10:05 पर आप कल सुनेंगे कार्यक्रम हौसला, लोक माधुरी कार्यक्रम सुनिएगा 10:30 और 11:00।

10:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रसधार। सांध्यकालीन प्रसारण में वंदन 5:10 पर और बहनों का प्रसारण घर आंगन आप तक पहुंचेगा 5:30 पर।

गुड इवनिंग रोहतास, 7:15 पर और आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 7:30 पर, जिले की हलचल 7:45 पर और ई मन पसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:50 पर। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। जी हां, कल अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा का रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आर्द्रता 70%।

0: अभी आप हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर दिल्ली से प्रसारित समाचारों की कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020

0: क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि